الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سمى

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
2: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
3: FM247365
4: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
2: 100 FM.
0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims और sunroof.
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
3: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
4: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
2: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। FM 247365।

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
2: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
3: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिल सजा जुर्म है। लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें। ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए पीटीए और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें। ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
4: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है। और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल मीडिया या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराहकुनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज़ के पेश नज़र ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज़ का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बरवक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज़ और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
3: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
2: मतलब
3: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
2: स्पेशल तो लग रही है।
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
2: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
4: सर सर नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिंसों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सर पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा।
5: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
6: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
7: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
8: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
10: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑलनेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्तें जवाबित लागू हैं।
11: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: This program is brought to you by
12: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
4: And सर सब नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीतता जा।
13: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए तरजीह देते हैं। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
14: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
15: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है। वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है। گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
16: ہماری ذمہ داری ہے.
17: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
14: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
18: لائک اس آن FM 247 365
19: FM 100
20: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
19: السلام علیکم پاکستان.

अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आज समीहा. और काफी दिनों की गैप रतब ना जाने कितने दिनों के गैप के बाद मैं आ गई हूं. उम्मीद करती हूं आप लोग खुशबाश होंगे और आपने बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया होगा ये लॉन्ग वीकेंड. और अब आ गया है मंडे बैक टू वर्क और आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास ऑलरेडी आने शुरू हो चुके हैं दोस्तों. ऑलराइट और आप लोग जो है मुझे मैसेज करेंगे टॉपिक के बारे में बात करेंगे लेकिन हम अपने शो का आगाज करेंगे कुरान शरीफ के तर्जुमे के साथ. आज हम पढ़ रहे हैं सूरह अल नशरा का तर्जुमा. सुबह का वक्त बेहतरीन वक्त है नमाज पढ़ने का कुरान शरीफ पढ़ने का. तो जब भी आप फजर की नमाज के लिए हम शोरा पढ़ते होंगे इंशाल्लाह और तो आप तर्जुमा भी जरूर पढ़े. तो आज हम पढ़ेंगे सूरह अल नशरा का तर्जुमा और ये सबसे मुझे मेरी फेवरेट सबसे ये वाली सूरत है कि जब आप परेशान होते हैं तो ये आपको बहुत हिम्मत देती है. इसका तर्जुमा आउज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्या हमने तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया और हमने उतार दिया तुमसे तुम्हारा बोझ जिसने तुम्हारी झुका दी थी कमर जिसने झुका दी थी तुम्हारी कमर और हमने बुलंद किया तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र सो बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है. सो जब तुम फारिग हुआ करो तो इबादत में मेहनत किया करो और अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो जाया करो. ये कितनी खूबसूरत सूरत है कि जब आपको लगे कि आप बहुत परेशान हैं या आप मतलब कुछ भी नहीं हो रहा तो जब आप ये सूरह पढ़ते हैं कि मुश्किल के साथ आसानी है तंगी के बाद आसानी है तो अल्लाह ताला से कभी अल्लाह ताला की जात से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए और हर वक्त दुआएं मांगनी चाहिए. और बच्चों को इस बात की आदत डालिए कि सुबह घर से निकलते वक्त वो सफर की दुआएं पढ़ें सुभाना लजी सखलना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन या दुरूद शरीफ पढ़े आयतुल कुर्सी. ये छोटी छोटी दुआएं उनको आनी चाहिए और वाकई में बहुत जरूरत है खासतौर पर कराची वालों को तो बड़ी जरूरत है क्योंकि हर तरफ कोई ना कोई अजीब सी नेगेटिव वाइब्स होती हैं. सुबह के वक्त आप अपना मूड अच्छा रखें बहुत सारी दुआएं पढ़ें. और बच्चों बैक टू स्कूल आई वांटेड टू प्ले पक्के दो सॉन्ग मगर आई थिंक अब काफी लेट हो गया. एनीवेज आई सी यू आफ्टर दिस ब्रेक कीप लिसनिंग टू एफएम 100.

0: AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ.
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
4: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं.
3: मतलब?
4: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ.
3: स्पेशल तो लग रही है.
4: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
3: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
0: This program is brought to you by Phoenix Laga aur Bhul Ja.
5: Phoenix Laga aur Bhul Ja. And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

वेलकम बैक जी, आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, और कोशिश ये कर रहे हैं कि आप हैप्पी हैप्पी हो जाए मंडे मॉर्निंग को। और मौसम अच्छा है कि न जाने ये बारिश, न जाने कब ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, मैं यही बोल रही होती हूँ कि भाई खुदा के लिए बारिश हो जाए। बादल जो है ना वो हमें उम्मीदें दिला के चले जाते हैं। फिलहाल तो हमें आपसे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक में क्या कह रहे हैं, कि किसकी राय की आपकी नजर में बड़ी अहमियत है। और नजीर खोसो कह रहे हैं, मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह की रजा अहम है क्योंकि वही असल रास्ता दिखाता है, उसके बाद माँ एक नजर में सब समझ जाती है, उसकी खामोशी भी मुझे बहुत कुछ कह देती है। खामोश माएं कहाँ होती हैं भाई, माओं का तो काम है अपने बच्चों की शक्लें देख के नसीहतें करना शुरू कर देना। ओके फिर वालिद की बात, वो तजुर्बे से बोलते हैं, उनकी नसीहत 10 किताबों के बराबर है। उस्ताद की राय भी वजन रखती है क्योंकि वो हमें बताते हैं, और आखिर में उस दोस्त की राय जो सच बोलकर साथ निभाए, बस यही लोग हैं जिनकी बात दिल पे लगती है। और वाकई में हर एक की बात दिल पे नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात बताऊंगी, इल्म जो है वो आपको किसी से भी मिले आपको लेना जरूर चाहिए। कहते हैं मुनाफिक भी हो, मुनाफिक मतलब एक वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग को कहते हैं मुनाफिक, मतलब वो काफिर से भी नीचे दर्जे के ऊपर है मुनाफिक, जो ना इस साइड पे ना उस साइड पे। और एक कॉल है मौला अली का कि अगर आपको मुनाफिक से भी इल्म मिल रहा है और उसकी किसी बात पे आपको लग रहा है कि अहमियत है, तो वो उसका भी मतलब उसकी बात सुने। तो ओपिनियन हमेशा ये भी मत देखें कि माँ बाप को जाहिर सुनना, क्योंकि माँ बाप की नाफरमानी बड़ी गलत होती है, क्योंकि उनका दिल दुखता है। आपको उनकी बहुत सारी बातें कभी लगता है कि सही नहीं भी हैं, लेकिन हम उनको तकलीफ ना पहुंचे इसलिए मान लेते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें हर अकलमंद इंसान जो आपको लगे थोड़ा बहुत अकलमंद है, समझदार है, कामयाब है, खासतौर पर दीनवी एतबार से भी कामयाबी देखनी चाहिए, सिर्फ दुनियावी एतबार से कामयाबी की जी बहुत पैसा है तो उसकी बात तो माननी ही चाहिए, बड़ा कामयाब इंसान है। लेकिन हम आसपास तो देखें तो उनकी राय पे जरूर अहमियत दें, लेकिन ये भी देखें कि उसने क्या अचीव किया। यहाँ पे तो खाला ताई अम्मा सब ही आके बोड़े होते हैं, तो वो इंटरफेयर जरूर कर रहे होते हैं आपकी जिंदगी के अंदर, तो उनकी राय को अलबत्ता इग्नोर करना चाहिए। दोस्त बहुत कम ही है जो आपसे मोहब्बत करता है असली में, बाकी वो अक्सर दोस्त गलत ही मशवरे दे रहे होते हैं, हाँ हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाली चीज होती है। तो खैर आप हमें बता रहे हैं, हमें आपके मैसेजेस का इंतजार है। अभी तक बड़े शानदार किस्म के मैसेजेस आ गए हैं, और अगर आप भी चाहें तो हमारी इस गुफ्तगु का हिस्सा बन सकते हैं। हमें मैसेज करें आज समिया के फेसबुक पेज पे या आज समिया इंस्टाग्राम पे, और हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं अभी अच्छा सा स्वीट सा गाना नाजिया सिंह की आवाज में, आइए सुनते हैं।

0: वाला बैंक।
1: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड जैस कैश ऐप नाउ।
2: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं, कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत जवाबित लागू है।
4: This program is brought to you by
5: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
6: and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
7: Like us on facebook.com/FM247365.

0: कोई फॉर्मूला 8 के अंदर जब रेसिंग कर रहा होता है वो अलग रश में होता है, लेकिन ये अलग रश है. और लेकिन रेस तो रेस है और जीत तो जीत है. सो आपको बहुत बहुत मुबारक हो तमाम घरों को जो ये रेस जीत गए हैं. और फर्स्ट वाले के रनर थे माजिद बलोच साहब. तो माजिद बलोच साहब अगर आप हमें सुन रहे हैं आपको बहुत बहुत मुबारक हो. कोयल को बहुत बहुत मुबारक हो. कोयल का बहुत ख्याल रखें, उसे अच्छी अच्छी चीजें खिलाएं, उसकी फेवरेट के वो गदागारी रेस जीती है. सो आई होप कि आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज हमारे शो के जरिए आप तक पहुंच गई है. थैंक यू बोले, थैंक यू बोले. और राइट, हमें आप मैसेज करें, थैंक यू बोल सकते हैं, आई डोंट माइंड. हमें मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या एट आरजे समिया इंस्टाग्राम पे. और शुक्रिया शुक्रिया. और हमें आप ये भी बता सकते हैं कि किसकी राय आपकी नजर में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, जिसकी बात को आप कभी भी इग्नोर नहीं करते. और हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, क्या कहते हैं, तो हम उनके मैसेजेस भी शामिल करेंगे. रहीम बलूच, अस्सलाम वालेकुम आपको भी. ऑल राइट, एंड वी विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक. कीप लिसनिंग टू एफएम 100.
1: It's 8:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur
2: bhul ja. हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
3: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं.
2: मतलब
3: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ.
2: स्पेशल तो लग रही है.
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
2: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
4: Easy Paisa laya shandar offer. Abhi service se naye shoes khareedein aur Easy Paisa QR se payment karke 25% cashback hasil karein. Ye offer mulk bhar ke tamam service stores par dastiyab hai. Aaj hi shopping karein aur cashback ka fayda uthayein. Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
5: Step School से foundation हो strong. Step Schools दे रहा है modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 03111117837.
6: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
7: PDCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagai sirf rupees 4,999 mein. Aur paaye free shock Android TV box worth rupees 15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagayein. Call 1218 ya UPDCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hain.
8: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
1: This program is brought to you by
9: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
10: एंड सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीतता जा.
11: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम हैं. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
12: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है.

0: FM 100 traffic update.
1: अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान FM 100 पर ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूं फारूक इजाज। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर इस पर ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ इस तरह है। FM 100 को मिलने वाले इत्तला के मुताबिक मंजिल पंप से कायदाबाद की जानी आने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। इसके साथ साथ कॉरेंजी इंडस्ट्रियल एरिया से वो ट्रैफिक जो मुर्तजा चौरंगी से ब्रूक चौरंगी की जानी जा रहा है, उस पर दरमियानी रास्ते पर ट्रैफिक का दबाव है और गाड़ियां स्लो मूव कर रही हैं। लिहाजा वो तमाम लोग जो इन रास्तों पर सफर करना चाहते हैं ट्रैफिक की सूरत हाल से आगाह रहें ताकि बर वक्त अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए FM 100 पाकिस्तान।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
2: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
3: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
2: मतलब
3: इमेजिन पुश स्टार्ट मल्टीपल ड्राइव मोड्स क्रूज कंट्रोल पावर ड्राइवर सीट एलॉय रिम्स और सनरूफ।
2: स्पेशल तो लग रही है
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
2: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
4: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
6: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
7: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
9: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वी

0: Bank, easy wala bank. PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf rupees 4,999 mein. Aur paye free shock Android TV box worth rupees 15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hai.
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: And Sir Subs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
5: FM247365.
6: Let's celebrate
7: 31 years of memory. Milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, मुझे कहते हैं आरजे समीहा और आज हमारा मौजूद गुफ्तगु ये है कि किस इंसान की राय को आप बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं कि मतलब कि यार बस इसकी बात तो जो है ना हमने बहुत माननी है, इसकी बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये बड़ा काबिल है हमारे उसके अंदर, मुझे बड़ा बचपन में लोग काबिल समझते थे, बड़ी उम्मीदें थी मेरे माँ बाप को मुझसे भी कि यार ये बड़ी काबिल बच्ची निकलेगी हमारी, पता नहीं क्या हुआ है उसको, फिर मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा काबिलियत भी एक बड़ा मतलब जिम्मेदारी होती है। ओके, और आप लोगों के पैगामात हमारे पास हैं, आप क्या कह रहे हैं हम जानना चाहते हैं। दोस्तों हमारे पास मिसेज अदील कह रही है, मिस शबनम मेरी नजर में मेरे माँ बाप के बाद मेरे शोहर की अहमियत सबसे ज्यादा है और मैं अपने शोहर की बात को अहमियत देती हूँ। बड़ी प्यारी सी फर्मा बरदार बीवी हैं, मुबारक हो आपको, ऐसी बीवी सबको मिले है ना, ये शोहर चाहते हैं। खैर, ऑन दी अदर हैंड आबिद अमीर ये कह रहे हैं कि मौजू पर जो कुछ कहूंगा कि वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी राय अहमियत रखती है मगर सैयदा आयशा की राय हमेशा फायदा पहुंचाती है, जाहिर है मेरा नुकसान बेगम का नुकसान है और मेरा फायदा उनका फायदा, कभी उनकी राय ना मान नुकसान हो जाता है, यानी मुझे वाली मिली है जिनके लिए लाइन कही जाती है कि मर्द के कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ है। बिल्कुल सही बात है, और मियां बीवी एक टीम की तरह होते हैं और जब दोनों साथ साथ चलते हैं तभी मतलब कामयाबी मिलती है, और जहां पे आपने साथ चलना छोड़ दिया, अलग मियां की राय अलग है और बीवी की राय अलग है और फिर आपस में इख्तलाफात हैं तो फिर वो घर या वो टीमें इतनी ज्यादा तरक्की नहीं कर पाती, तो अच्छी बात है। और क्या कहते हैं ऑलराइट, तो खैर आप लोगों के मैसेजेस का हमें मजीद इंतजार रहेगा, आप लोग मुझे मैसेज करें आरजे समीहा के फेसबुक पेज पे, आरजे समीहा के इंस्टाग्राम पे, और अभी हम क्लासिक टाइम के अंदर आपको बता रहे हैं एक बतानी है सुना रहे हैं एक गाना आबदा परवीन का जो बहुत अच्छा लगता है मुझे, सबको आई थिंक काफी लोगों को अच्छा लगता है, उसमें कहते हैं अरे लोगों तुम्हारा क्या मैं जानूं मेरा खुदा जाने, क्योंकि हम अब इतनी सारी राय लोगों की जब सुनते रहते हैं तो हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और लोगों की राय की नहीं परवाह करें, अक्लमंद काबिल बाकिरदार लोगों की राय की परवाह करें। अब तो जी इंस्टाग्राम पे लोगों की राय शुरू हो गई है, हर कोई अपनी राय दे रहा होता है, पहले होता था कि जी पीटीवी एक चैनल होता था उसमें आपको पता होता था कि अगर पीटीवी तक कोई पहुंच गया है तो यकीनन उसमें कोई खास खूबी होगी क्योंकि वहां पर सिर्फ हाईली इंटेलेक्चुअल लोग ही पहुंच सकते थे, अब तो जी कोई भी बंदा कोई भी मतलब कहीं से भी जो है ना उसने अपनी वीडियो बना ली और उसके जो है ना वो अगर जितनी ऊट पटांग वो बात करेगा ना उतने ज्यादा उसके फॉलोअर्स हैं, लोग इसलिए फॉलो करते यार इसने अभी भी कोई बेकार सी कोई फजूल सी बात करनी है, देखते हैं इसकी फजूल सी बात, अब देखते हैं अब आज ये कौन सी फजूल सी बात कर रहा है, तो लोग फजूल बातों को जो है वो ज्यादा फॉलो करते हैं और उनके ज्यादा फॉलोवर्स हैं, जिसके ज्यादा पहले होता था कि जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, नहीं नहीं नहीं नहीं, सोशल मीडिया वर्ल्ड जिसके पास ज्यादा फॉलोवर्स है भले वो कुछ भी करके उसने फॉलोवर्स बनाए हो है वो बस वो कामयाब है, और बाकी अगर वो कोई तमीज तरीके की बंदा बात भी कर रहा है ना उसके फॉलोवर्स कम है तो लोग जेन जी स्पेशली ओह माय गॉड इवन जेन अल्फा इसके तो फॉलोवर्स ही नहीं है ये क्या है, तो इसलिए आप इन आम आवाम की राय पे ना जाएं क्योंकि यूजुअली मेजॉरिटी गलत होती है, आम आवाम मेजॉरिटी इनकी राय गलत होती है, बंदा ये ना देखे कि भाई बनके मेरा रिश्तेदार बात कर रहा है तो अच्छी बात कर रहा होगा, और वाट लगा दिया ऐसे लोगों ने ना जैसे घर की उनसे ना पूछा जी उनसे मशवरा नहीं किया, भाई मशवरा क्यों करते, उन्होंने क्या किया सारे दिन तो घर पे ही थी, मैट्रिक से पहले तो उनकी शादी हो गई, घर से वो कभी बाहर निकली नहीं, तो फिर हर शादी उनकी राय के मुताबिक क्यों होगी, ये भी देखना चाहिए कि राय आप किसकी ले रहे हैं, बड़े हो जाने से आप बुजुर्ग नहीं हो जाते, और अपने अंदर भी अगर आप चाहते हैं कि वक्त के साथ साथ अकल आए तो अपने आप को पढ़े लिखे काबिल लोगों के दरमियान रखें क्योंकि सोबत का बहुत असर होता है, और अगर काबिल और जहीन लोग आपको आसपास नहीं मिल रहे तो आप अच्छी किताबें पढ़ें, और बड़े बदकिस्मत हैं वो लोग जो अच्छी किताबें नहीं पढ़ते, अगर और कुछ नहीं पढ़ सकते तो कुरान शरीफ पढ़ने तर्जुमे के साथ सबसे बेहतरीन जो है ना वो राय देने वाला वो है, और फिर उसकी जब आप इंसान उस पर चलना शुरू हो जाता है ना कुरान के ऊपर उसे किसी की उससे फिर परवाह ही नहीं होती कि वो कौन कर रहा है कौन क्या कह रहा है, कहता है छोड़ो यार ऑलराइट, तो आप सुनते हैं आबदा परवीन की आवाज में ये ट्रैक।

गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप सुन रहे हैं एफएम 100 पे और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे समीहा। कैसी जा रही है आपकी सुबह? और आपने नाश्ता कर लिया, चाय पी ली? हम तो चाय के इंतजार में हैं, कब आएगी ये चाय। चाय तुम आ जाओ, चाय तुम कहां चली गई। तो खैर, चाय भी एक बड़ी जरूरी चीज है। चाय के बाद इंसान की राय बदल जाती है, खाने के बाद मेरा ओपिनियन तो बिल्कुल ही बदल जाता है। खाने से पहले दुनिया जहर लग रही होती है, खाने के बाद थोड़ी काबिले कबूल लगती है। और राइट, हम बात कर रहे हैं आज आपकी राय की, कि किसकी राय की आपकी नजर में जरा अहमियत है। मजे की बात है, सियासतदान जो है ना तकरीरें कर रहे होते हैं ना हमारे मुल्क में, तो हमें लगता है कि उनको लगता है ओह मैं जो कह रहा हूं उसी की अहमियत होगी। और पहली बात हमें पता है कि तकरीर भी आपने खुद नहीं लिखी है। मैं तो कह रही हूं ये लोग, ये वो लोग हैं हमारे लीडर्स, यकीन करें, जो तकरीर पढ़ते भी उसी वक्त है जब उनके सामने रखी होती है। उनसे ये भी नहीं होता, इतनी भी मेहनत, इतनी भी एफर्ट नहीं होती है लोगों से कि भाई अगर किसी ने तकरीर लिख भी दी है तो पहले तुम पढ़ लो, पढ़ लो, उसमें हो सकता है कोई गलती कोई टाइपो हो, वो भी नहीं पढ़ते। वो उसी वक्त, उनको इतना कॉन्फिडेंस, वल्ला कॉन्फिडेंस का आलम देखें कि वो उसी वक्त पढ़ते हैं। अच्छा फिर कुछ भी लिख दो उसके अंदर, वो पढ़ लेंगे। और राइट, खैर मैंने एक सीरीज देखी थी, अमेरिकन सीरीज थी, उसमें था कि वो प्रेसिडेंट, खैर वो तो खैर अजीम पढ़ा लिखा प्रेसिडेंट दिखाया था उसमें, तो वो जरूर तकरीर उसके लिखने वाले बहुत सारे थे और वो बहुत काबिल लोग उसकी तकरीरें लिखते थे, लेकिन वो जरूर पढ़ता था और फिर एतराज भी करता था कि आप तुमने ये बंदा क्यों लिखा है, ऑथेंटिक बात है कि नहीं, इसका क्या प्रूफ है, तुमने सिर्फ एम ही लिख दिया है। तो हमारे यहाँ खैर ऐसी कोई तस्दीक नहीं है, बल्कि जो उनकी आप जो सुन रहे होते हैं तकरीरें, अक्सर ये उनके ब्यूरोक्रेट्स की राय होती है, उनकी अपनी राय नहीं होती। कभी भूल से भी किसी मिनिस्टर की राय को अपनी राय समझिएगा। हाँ, बहुत जो लोग तकरीरें ही नहीं पढ़ते, कहते हमें तकरीरों की जरूरत ही नहीं है, हाँ वो लोग जो बोल रहे होते हैं वो भी ओवर कॉन्फिडेंट लोग, वो उनकी राय की अहमियत होती है। लेकिन अब तो खैर सियासतदानों ने अपनी रेपुटेशन इतनी खराब कर दी है कि अब लोग उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जो भी बोला झूठ है, झूठ है भाई, तू हटा। अब वैसे भी लोगों की बातों को नहीं, उनके कामों को देखना चाहिए। हमारी बातें हो चुकी, मैंने बड़ी शुमाली, अब मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ूंगी। अदनान अहमद कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अहमियत मेरे वालदैन की राय की है, क्योंकि दुनिया तालियां भी बजाएगी और तनकीद भी करेगी, लेकिन वालदैन वो आईना है जो बगैर मुफाद के सच बोलते हैं। उनका एक बेटा ये मत करो मैं 100 नसीहतों का वजन होता है, दूसरे नंबर पर मैं अपने दिल की सुनता हूं। ओह क्या बात है, क्योंकि 100 लोग तारीफ करते और दिल मुतमईन ना हो तो रात को नींद नहीं आती, मुझे तो आ जाती है। मुझे बड़ी अच्छी नींद आ जाती है कोई मेरी तारीफ करे वैसे। और क्या कहते हैं, और दिल कहे तुम ठीक हो तो इंसान सर उठा के चलता है। और तीसरे नंबर पर उन लोगों की राय जिनका तजुर्बा मुझसे ज्यादा है, उस्ताद दोस्त और मेंटोर, अंधी तकलीद नहीं लेकिन इज्जत के साथ उनकी बात तोलता हूं, क्योंकि अकेला इंसान अपनी गलती नहीं देख पाता है। प्रॉब्लम है ये कि हम अपनी गलती नहीं देख पाते, ये भी अच्छा टॉपिक है ना दान साहब, हो सकता है, क्या कहते हैं आप। और मोहम्मद रफीक मेमन फ्रॉम सखर मैसेज करते हैं कि मुनाफिक और हासिद दोस्त की राय। ओहो, मुनाफिक और हासिद दोस्त, पहली बात है जिस बंदे में ये दोनों चीजें, वो आपका दोस्त कैसे हो सकता है। जिसकी वजह से मुझे अपनी खामियां पता चलती हैं ताकि सुधार सकूं, मुखलिस रिश्तों वाले तो हमेशा अच्छी ही राय रहते हैं। रफीक मेमन साहब और आपकी स्वीट बातें, और आप लोग भी मुझसे स्वीट बातें कर सकते हैं। नसीन पटेल जी कहाँ है, नसीन पटेल जी आप 14 अगस्त से मिलने नहीं आई मुझसे, आप मेरे लिए हरी चूड़ियां भी नहीं लाई, क्या बात है यार, मुझे बड़ी मिस की मैंने हरी चूड़ियां। तो क्या वो नेहर से वाला चूड़ियां नहीं, 14 अगस्त वाली चूड़ियां होती हैं ग्रीन एंड व्हाइट। और मुझे रही बलो साहब ने अपने बच्चों की तस्वीर भेजी है, शेर अली और सिद्रा बड़े प्यारे लग रहे हैं दोनों बच्चे, और आबिद अमीर के बच्चा बेटा भी बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। मुझे और लोगों ने भी तस्वीरें भेजी अपने बच्चों की, बड़ी अच्छी बात है। सिंह पटेल जी इंतजार है आपके आने का, ऐसे आप जब आती हैं तो बस बाहर आ जाती हैं। और राइट, फिलहाल हम उन्होंने बड़ी अच्छी बात की वैसे अदनान अहमद ने, कि दिल मैं अपने दिल की सुनता हूं। तो अदनान अहमद इसी बात पे हम प्ले करते हैं आपके लिए ये ट्रैक, आइए सुनते हैं।

0: चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
1: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
2: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
4: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
6: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। अभी

0: बैंक।
1: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड जैस कैश ऐप नाउ।
2: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा क्यूआर से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं, कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत सवाबित लागू है।
4: This program is brought to you by
5: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
4: and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
6: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: तो फिर कैसा लगा आपको ये गाना? अच्छा था ना? तो थैंक यू महफूज वंस अगेन फॉर आपने मुझे ये इतना अच्छा सा गाना सुनवाया और दिया ताकि मैं अपने लिसनर्स को ये गाना सुनाऊं. अगर आपने ड्रामा नहीं देखा आपकी इज्जत, तो आपको देखना चाहिए. और अभी तो मैं भी देख ही रही हूँ ड्रामा, आई डोंट नो कि आगे क्या होता है, लेकिन उसमें उन लोगों के लिए बड़ा सबक है जो दूसरी शादी करने की ख्वाहिशमंद है. उसने बताता है कि अगर दूसरी शादी करने के जो मर्द हजरात ख्वाहिशमंद होते हैं, उनको लगता है कि ये उनका हक है क्योंकि हमें जायज है, तो फिर उनके घर पे क्या असर पड़ सकता है इस चीज का. और अगर औरत इंतकाम पे आ जाए, वो बोले कि चलो तुम्हारा दिल चाह रहा है हम भी कुछ करते, तो फिर मर्द उस बात को कैसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, राइट? और मैं आपको बताता हूँ कि औरत का इंतकाम बड़ा खतरनाक और बड़ा लीथल है. तो वो होती है ना पानी ना मंगी, तो वो वाली चीज होती है. तो मत हजरात को चाहिए कि आप हमें तो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें ना करें. खैर एनीवेज ड्रामा अच्छा है और पाकिस्तानी ड्रामे, पाकिस्तानी कंटेंट अभी इंडिया से कहीं ज्यादा, कहीं लेवल आगे है. बल्कि इंडियंस आर क्रेजी अबाउट पाकिस्तानी ड्रामाज, दे आर गोइंग एब्सोल्युटली क्रेजी. उनके कॉमेंट्स, उनकी इतना कंटेंट, पाकिस्तानी ड्रामों के रिव्यूज, पाकिस्तानी के ओएसटी के रिव्यूज, जो उनका ओएसटी है उस पर रिव्यूज बना रहे होते हैं, और मतलब उतनी रील्स बना रहे होते हैं सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामों पे. तो ये हमारी कामयाबी है. और दूसरी बात है कि हमारे हमारी उर्दू जबान की कामयाबी है और उर्दू लिखने वाले, उर्दू सोच, हमारा कल्चर, इस्लामिक कल्चर जाहिर है उसकी हमेशा से एक खूबसूरती है, एक बात है जो वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते. एनीवेज, और आप लोगों की मुझे राय का इंतजार रहेगा. आप लोग मुझे मैसेज करें आरजे समीहा के फेसबुक पेज पे या एट आरजे समीहा इंस्टाग्राम पे, और ये बताएं कि आपकी नज़र में किसकी राय की, किसकी ओपिनियन की बहुत अहमियत है. बहुत सारे लोगों ने कहा उनके माँ बाप की राय है, उस्ताद की राय है, बॉस की राय है. असल सच्ची बात यह है कि आज कराची के जो मर्द है ना, स्पेशली जो शरीफ मर्द है, वो सिर्फ दो लोगों की राय को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, एक अपनी बीवी की घर में और ऑफिस में बॉस की. बस इन दो लोगों के दरमियान उनकी जिंदगी गुजरी है, बाकी राय बाय बाय बाय. और राइट, हम मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. हमें मैसेज करें हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे आज ही समय. हाँ
1: इट्स 9:45 AM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय फिनिक्स बैटरीज.
2: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
3: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशन्स ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111111.

0: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत तो सवाबित लागू है।
3: This program is brought to you by
4: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
3: and Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
5: Khawateen o hazrat, manshiyat wo zehr e qatil hai jiski sanjeedgi ka ehsaas insaan ko tab hota hai jab ye zehr hamari ragon mein zaid kar chuka hota hai. वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा उड़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोबत है, जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। घर दिल से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है। खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखे ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके। हमारा आज़म एक कौम एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

हमारा पार्टी का सीन हो, और तो हम थोड़े जो है वो क्या कहता है, मजे करें, एंजॉय करें, बारिश यूं डर गई वो कराची वालों ने इतना रोना रोया ना कि बारिश यूं हुई, बारिश ही हुई, तो बारिश ही डर गई, मैंने होना ही नहीं है, तुम लोग जो है ना रोते ही रहते हो, तो अब मैं कहती हूँ फिर भी बारिश हो जाए। खैर, और आसिफ कमाल का मैसेज आया, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग बहादुर समिया जी, मैं तो मसला हो तो अपनी वाइफ की राय लेता हूँ, जो वो मशवरा देती हैं उसका उल्टा कर देता हूँ। ओ माय गॉड, अच्छा उसका उल्टा कर देता हूँ, इसलिए आज मैं एक कामयाब शौहर हूँ और मैं सारे शौहरों को ये मशवरा देता हूँ। आसिफ कमाल साहब, आप अगर जिंदा शौहर रहना चाहते हैं, भले आप कितने कामयाब हो अपनी जिंदगी के अंदर, लेकिन आपने अगर उल्टे मशवरे दिए, सबसे पहले तो मैं नहीं आपको उठा के बाहर फेंक देना है, मुझे जानते हैं ना बहादुर हूं मैं, तो ये आपने क्या मशवरा दिया है कि बीवियों की राय उल्टी हो। हाँ, आप क्या समझते हैं औरतों, ये बड़ा आपने, वैसे अमेरिका में होते तो आपको बैन और डिपोर्ट कर देते वापस, कि वो कहते हैं कि बड़ा आपका खवातीन, क्यों खवातीन की अक्ल कम होती है, खवातीन को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। जी हाँ, तो ऐसा नहीं कि खवातीन की अक्ल कम होती है तो उनकी बातें ना सुनो और ये वो, पहली बात ये है कि खवातीन को पढ़ने लिखने का मौका तो आप दें तो वो कोई बात करें। खवातीन आपको, हाँ, शादी किससे करनी होती है जी, 18-19 साल की लड़की, बिल्कुल छोटी लड़की लाती हैं जो है ना, लड़के की माँ, ठीक है, बिल्कुल छोटी बच्ची आएगी ताकि वो हमारी खिदमत करते रहे और हमारे आगे कुछ ना बोले, ऐसी लड़की उनको चाहिए। और खुदा ना खौसता पढ़ी लिखी, तुम्हें पता है आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों कोई बात ही नहीं सुनती। अगर आपकी बीवी पढ़ी लिखी है तो एक नस्ल पढ़ी लिखी होती है, और मैं तो कहती हूँ पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी क्राइटेरिया होना चाहिए आपका, कि यार खूबसूरती से ज्यादा अहमियत पढ़ी लिखी बीवी की होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ी लिखी बीवी के बड़े फायदे हैं। एक तो घर में ही ट्यूशन दे देगी, आपकी नौकरी चले ना चले जो बड़े मसले होते हैं, तो घर के अंदर वो ट्यूशन देके पढ़ा लेगी, बच्चों को भी घर में ही पढ़ा देगी, और आपको पता है आजकल अच्छे स्कूल में भी एडमिशन जो है ना वो बीवी को देख कर दिया जाता है, माँ को देख कर दिया जाता है, हस्बैंड को कोई नहीं पूछता, जितनी माँ पढ़ी लिखी होती है तो वो उतना ही बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करने के चांसेस होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप पढ़ी लिखी बीवी से शादी करें ताकि फिर आप उसकी राय का मजाक ना उड़ाएं। हाँ, ख्वातीन इमोशनल होती है, मैं मानती हूँ, और लेकिन ये नहीं है कि वो बेवकूफ है या किसी से कम है। एक मिसाल आपके सामने, या आप सुन रहे होंगे, ठीक है, कि और बाकी जगह मर्द हजरात है, यहाँ पे खातून बूढ़ी है, और खातून हर फील्ड में अपने आप को मनवा चुकी हैं, और लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप खवातीन को मौके दें, क्योंकि उनका दिमाग बड़ा तेज चलता है, तेज चलता है हमारा दिमाग, और जितना पढ़ी लिखी खवातीन जो नहीं होती उनके दिमाग और भी ज्यादा तेज चलते हैं, वो फसादात में फिर ऐसे मजाक उनके चलने होते हैं ना जो इलिटरेट और जाहिल खवातीन होती हैं। तो इसलिए आप आसिफ कमाल, आगे से आपने अगर अपनी बीवी, अब आपकी बीवी के मैसेजेस में पढ़ूंगी, आप तो बस मेरी, मुझे, मैं बता रही हूँ आपको, कुछ लोगों पे ना मेरी नजरें हैं कि वो नेगेटिव बातें कर करके जो है ना मेरा दिल खराब कर रहे हैं। ऑलराइट, और इसी के साथ ही मैं आप लोगों से इजाजत लूंगी, प्लीज खुदारा, ऐसा लगता है कि बहुत कमी है हमारी लाइफ के अंदर अब अकलमंद लोगों की। पहले हमें लगता था कि टीवी खोलते थे तो अकलमंद लोग आना शुरू हो जाते थे, जिया मोहियुद्दीन जैसे तरीके वाले लोग बातें गुफ्तगू कर रहे होते थे, इल्मी गुफ्तगू और बहस हो रही होती थी, अब ना उस तरीके के प्रोग्राम्स हैं, अब तो हर चीज पैसा हो गया है, पैसे को अपना मयाना बनाएं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें ताकि जो है आपका जो है आपकी सोच बुलंद हो। आप जब अच्छी किताबें पढ़ते हैं, जब मेरे अबू कहते थे जब आप अल्लामा इकबाल की कोई किताब पढ़ रहे होते हैं तो आप अल्लामा इकबाल की सोबत उनके साथ हो रहे होते हैं उनकी, और बल्कि आम गुफ्तगू में इंसान के ख्यालात काफी सतही भी हो जाते हैं, लेकिन जब वो लिख रहा होता है तो उसके ख्यालात का परवाज बड़ी सोच ऊंची होती है। तो इसलिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें ताकि आपका अपना ओपिनियन अच्छा हो जाए, लोग आपसे मशवरा लें कि बड़ा कोई काबिल पढ़ा लिखा इंसान है, क्योंकि बड़े बदकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी फैमिली उनको नहीं पूछती, कोई शादी ब्याह का मामला हो इससे क्या पूछना है, तो पागल है, तो गुस्सा आ जाता है इसको, तो ऐसे आई होप कि आपके साथ ना होता हो कि फैमिली में। और राइट, और आप इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और जाने से पहले मैं एक समझदारी वाली बात करना चाहती हूँ, और वो ये है कि सबसे बड़ी समझदारी जो है वो शुक्रगुजारी है, सबसे बड़ी समझदारी शुक्रगुजारी, कि अगर आप शुक्रगुजार इंसान है ना आपकी जिंदगी बड़ी प्यारी है। और इसी के साथ मुझे दी इजाजत, आई एम लीविंग यू विद दिस ट्रैक, वो दिल की बात जो लोग दिल की सुनते हैं तो दिल का भी क्या भरोसा, क्योंकि दिल कभी भी तो कलाबाजी खा सकता है। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
2: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
3: 100 FM।
4: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
5: facebook.com/fm247365 fm247365.
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
1: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ। 100 FM।
2: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।

0: 7:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
0: 100 FM। रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 24/7/365

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नात्रा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज़ और सार्फिन

完成回来。

0: सुभाष।
1: ऑल राइट, तो जी हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज, तो इट मींस कि अब आपने बन जाना है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। और इसके लिए आपने करना कुछ यूं है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर आपने सेंड कर देना है 3636 पे। साथ ही साथ आपने ये करना है कि जी फेसबुक पर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल पेज पर भी मैंने जो है वो स्टेटस अपडेट कर दिया है, वहां भी कमेंट कर सकते हैं और अपने हाल अहवाल बता सकते हैं कि भाई आप लोग कैसे हैं। तो दो अदद तरीकाकार हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने का, जिसकी आगाही हमने आपको फराहम कर दी और वक्फे वक्फे से आपको बताते भी रहेंगे। तो भाई हाल अहवाल कैसे हैं, छुट्टी का दिन आप लोगों ने कैसा गुजारा, कराची का मौसम कल बहुत अच्छा था और कल कराची में रात के औकात में कुछ इलाकों में तेज बूंदाबांदी भी रिकॉर्ड की गई और महकमा मौसमियात ने ताजा तरीन पेशन गोई के मुताबिक ये भी कहा है कि सिंध में अभी कोई भी स्पेल सिस्टम मानसून का नहीं आ रहा है और न ही कोई तेज बारिश की तवक्कात मौजूद है तो सिर्फ हल्की सी बारिश है पूरे सिंध नहीं, ऑल ओवर सिंध के लिए ही अभी फिलहाल जो ताजा तरीन अपडेट्स है उससे आगाही फराम कर दी गई है। तो भाई ये है, यानी कि ज्यादा उम्मीदें हम नहीं बांध भी नहीं रहे थे और हमें ज्यादा उम्मीदें बांधने का मौका भी नहीं मिला। हाय हाय हाय, इंतजार करते करते 8 माह गुजर गए कि जी अब होगी बारिश, तब होगी बारिश, लेकिन भाई नहीं होके दी कराची में बारिश। लेकिन कोई बात नहीं जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम फिर भी उम्मीद रखेंगे, खुदा चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, तो क्या पता बारिश भी हो जाए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन द गुड थिंग इज दैट कि चलो बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन कराची का मौसम अच्छा है, इस वक्त काफी बेहतर मौसम है कराची का। कल इनफैक्ट संडे वाले दिन भी कराची का मौसम काफी बेहतर रहा, अबर आलूद रहा है और हवाएं भी चल रही हैं। सो आई मस्ट से कि चलो कोई बात नहीं, बारिश नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, कम से कम मौसम तो अच्छा है। ये हो कि भाई बारिश भी नहीं हो रही हो और तपता हुआ मौसम, गर्मी, शदीद गर्मी जो कि हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इस साल हमने बहुत ज्यादा गर्मी को भी एक्सपीरियंस किया, बहुत ही जबरदस्त किस्म की गर्मी जिसने हम लोगों को ना हमारे होश हवास उड़ा दिए थे। लेकिन द गुड थिंग इज दैट कि चलो वो वक्त गुजर गया, अभी हम अच्छे टाइम को गुजार रहे हैं। हाय, और अल्लाह पाक इस अच्छे वक्त को जारी रखे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खैर जी, आप लोग अपने हाल अहवाल बताएं, छुट्टी का दिन कैसा गुजरा, हम आपके मैसेजेस और कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम चलते हैं एक तो ट्रैक की जानिब और आते हैं वापस ट्रैक के पास।

ओके जी, सो प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज भी हो चुका है, कुछ बातें भी कर ली हैं और अभी तो बहुत सारी बातें बाकी हैं मेरे दोस्तों। तो जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो जाएं, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। साथ ही साथ फेसबुक पर आज फातिमा खान का पेज भी बना हुआ है, आप लोग वहां भी कॉमेंट कर सकते हैं, हमने वहां भी स्टेटस अपडेट कर दिया है, तो आप कॉमेंट के जरिए अपनी हाजिरी लगा सकते हैं और अपने हाल अहवाल बता सकते हैं। सो आई होप एवरीबडी इज वेरी वेरी वेल। और जश्न आजादी भी हमने मना ली है, जो कि बड़े जोशो खरोश से मनाई है। बड़े शिद्दत से इंतजार था कि जी 14 अगस्त आ जाए, उससे पहले की एक अलग ही लेवल की मसरूफियात होती है। खैर अब तो हम रबी लेवल के महीने में दाखिल हो चुके हैं, सो बैक टू बैक देयर लॉट्स ऑफ मसरूफियात वी ऑल हैव। अच्छा जी, आज ना कौन कौन से दिन मनाए जा रहे हैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आज आपको पता है आज कौन सा दिन जो है वो मनाया जा रहा है? आज है बेबी मूमर्स रिकग्नाइजेशन डे। अच्छा भाई, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ये आप क्या कह रही हैं, बेबी मूमर्स ये क्या होते हैं, ये कौन से दिन होता है? अच्छा तो चलें जी, आज हम ना जनरेशन पर बात करेंगे। अब हम सबके हाथों में मोबाइल फोन मौजूद होते हैं, अब जो है वो हम लोग आजकल जो ट्रेंड है या चीजों को फॉलो भी हम ना वो सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चीज ट्रेंडिंग है। वैसे ही अब से कुछ टाइम से आपने ये भी सुना होगा कि भाई जेंजीज ये करते हैं, जेंजीज वो करते हैं। तो बेसिकली ये सब जो है वो एक जनरेशन के नेम्स होते हैं और बेबी मूमर्स भी एक अदद जनरेशन ही है। तो आज मैंने सोचा है कि आज हम जनरेशन पर बात करेंगे, इसलिए क्योंकि आज इस दिन को मनाया जा रहा है। अच्छा भाई, आज हम आपको तफसील से बताएंगे कि ये जनरेशन क्या होती हैं। तो बेसिकली ऐसा है कि जनरेशन को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है अब, और उस तरह ना उन जनरेशन को जाना जाता है इन नामों से। अच्छा चलें जी, शुरू से बताते हैं, यानी कि बहुत ओल्डर से शुरू करते हैं। तो भाई एक है ओल्डर जनरेशन, ठीक है, उस जनरेशन का नाम है लॉस्ट जनरेशन। ये जनरेशन जो है वो 1883 से 19 तक मनाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है द ग्रेटेस्ट जनरेशन, जो कि 1901 से 1927 तक मनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट जनरेशन। फिर उसके बाद एक और जनरेशन है जिसका नाम है साइलेंट जनरेशन, जो कि 1928 से 1945 तक मनाई जाती है। सो ये वो तीन जनरेशन हैं जो कि बहुत ओल्ड जनरेशन हैं। उसी के बाद अगर हम मॉडर्न जनरेशन की बात करें, जहां पर सबसे पहले आते हैं बेबी बूमर्स। अच्छा, ये बेबी बूमर्स वो हैं जो कि 1945 से लेके 1964 तक की जनरेशन को बेबी बूमर्स कहा जाता है, जो कि उमूमन तौर पर हमारे दादा नाना, दादा दादी, नाना नानी की टाइम की जनरेशन को बेबी बूमर्स कहते हैं, क्योंकि ये 1945 से लेके 1964 तक है। तो इतने टाइम के स्पेल एक अदर जनरेशन है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं और उसके बाद हमारे पास आते हैं मिलेनियंस। ओ नहीं नहीं, उससे पहले हमारे पास आती है जनरेशन एक्स, जो कि है 1965 से लेके 1980 तक। ओके, फिर आते हैं भाई मिलेनियंस, जो कि 90s में पैदा हुए होते हैं, यानी कि 1981 से लेके 1966 वाले जो हैं वो 1996 वाले जो हैं वो कहलाते हैं मिलेनियंस, यानी कि जो 90s में पैदा हुए हुए हैं उनको मिलेनियंस कहा जाता है। और फिर उसके बाद आती है हमारी जनरेशन, यानी कि जेन जीज, यानी कि जनरेशन जी, वो होती है जी 1997 से लेके 2012 तक। तो ये जो मैंने अभी आपको एयर्स बताए ना, इन एयर्स में जो जो लोग पैदा हुए हैं उसको इस जनरेशन में कैटेगराइज कर दिया गया है, बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, मिलेनियंस, जनरेशन सी। और उसी के साथ साथ जो अभी के बच्चे, यानी कि 2013 से लेके 2024 तक के बच्चे, वो हैं जनरेशन अल्फा। और अभी यानी कि जो बच्चे पैदा हुए हैं 2016 से लेके 2039 तक के बच्चे जो हैं वो हैं जनरेशन बीटा। ओह माय गॉड, लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि जी आज आरजे फातिमा खान किस तरह की बातें कर रही हैं, क्या क्या बातें कर रही हैं, कौन कौन सी यार बता रही हैं। तो भाई आज ना हम आपको जनरेशन के हवाले से बता रहे हैं कि कौन कौन सी जनरेशन को किस नाम से जाना चाहता है। क्या आपको आपकी जनरेशन पता है कि आप कौन सी जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं? आप बेबी बूमर्स हैं, आप जनरेशन एक्स हैं, आप मिलेनियंस हैं, आप जेंजी हैं, और जनरेशन अल्फा भी वैसे इस वक्त हमारा शो सुन सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 2013 से लेकर 2024 तक के वो बच्चे हैं जो जनरेशन अल्फा हैं। तो आप किस जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं, क्या आप इस हवाले से जानते हैं या नहीं? अगर आप नहीं जानते तो आप हमसे अपना एयर भी शेयर कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि भाई आप जो हैं वो कौन सी जनरेशन की कैटेगरी में आते हैं।
सो आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो हम कर रहे हैं आपके मैसेजेस और कमेंट्स का इंतजार, यानी कि आरजे फातिमा खान के फेसबुक पेज को अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे स्टेटस अपडेट कर दिया है, वहां पर आप अपना ईयर मेंशन कर सकते हैं, या फिर साथ ही साथ आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे. क्या आप जानते हैं कि आप किस जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं? और अगर नहीं जानते तो आप हमें मैसेज कर दें अपना ईयर, हम आपको बताएंगे कि जी आप कौन सी जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं. जब तक हम चलते हैं एक अदर ट्रैक की जानिब, आते हैं वापस ट्रैक के बाद.

0: होगी। वो जा रहा है कोई शबम दिखाती, वीरा है मैं कदा खुम सावर उदास, तुम क्या गए।
1: इट्स 12:45 PM। This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: Pakistan samet duniya bhar mein bahut si auraton ko mali, jismani, zehni aur jinsi gharelu tashaddud ka samna karna pad raha hai. Chahe aap kisi ke shohar, walid, bhai ya bete ho, apna stress और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: 100 FM।
5: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें।

और इसके बाद आती है हमारी जनरेशन एक्स, मिलेनियंस आते हैं, फिर जनरेशन जी आती है जिसे जेंजीज कहते हैं, फिर जनरेशन अल्फा और जनरेशन बीटा, तो वो बच्चे हैं जो कि 2026 में पैदा हुए हैं, तो वो तो अभी खैर बहुत ही छोटे हैं। तो आप जानते हैं कि आपके जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं हमें जरूर बताएं, और अगर नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप हमें सिर्फ अपना एयर मैसेज करें, हम आपको बताएंगे कि जी आप किस जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं। उसी के साथ साथ भाई हमारे लिस्नर आ चुके हैं वापस, तो आपको हम वेलकम बैक कहेंगे, कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाउ आर यू। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, कहते हैं आई एम गुड। आपका लिसनर अपने इस खूबसूरत शहर आ गया है, बट वहां आपके शो की याद आती रही रियली। ओहो, हमने भी आपको मिस किया। चलें जी, द गुड थिंग इज दैट कि अब आप आ गए हैं और हमारे शो से कनेक्ट हो चुके हैं। कहते हैं लंच में कोरमा है आपके लंच में, मेरे लंच में आज जो है वो कोई मिक्स सब्जी टाइप लग रही है मुझे, आज वो है मेरे लंच में। कहते हैं छुट्टी में तो नींद पूरी की, पॉसिबल हो तो ट्रैक लगा दीजिएगा, रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी। चलो भाई, रशीद खान तो फ्रेश होकर आ गए हैं, एक टूर लगाकर आए हैं लाहौर वहर का, लाहौर एंड इस्लामाबाद का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑल राइट, तो चलो जी, ये तो फ्रेश होकर आ गए हैं अपने टूर को एंजॉय कर। अब चलते हैं इनके पसंदीदा ट्रैक की जाना है, जिसकी रिक्वेस्ट मुझसे बहुत दफा ये करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है ट्रैक। तो ठीक है जी, हम आपको ये ट्रैक सुनाते हैं आपके वेलकम बैक की खुशी में, और साथ ही साथ आप भी हमसे कनेक्ट हो जाएं, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे, या फिर आप जो है वो फेसबुक पे आरजे फातिमा खान की पेज को फॉलो करें, वहां भी हमने स्टेटस अपडेट कर दिया, तो वहां भी आप कमेंट के जरिए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। चलते हैं ट्रैक की जाने, बातें वापस ट्रैक के बाद।

0: 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: This program is brought to you by
2: Step School से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111117837।
0: facebook.com/fm247365
3: fm247365 You're in tune with the lunchtime special on the big one, FM 100.

ओके, द प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत हो गई कायम, यानी कि एक तो ट्रैक हमने आपको कर दिया है डेडिकेट, और अब हम आपको बताएंगे तरीका है कार के कैसे आप भी बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो इसके लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। साथ ही साथ जो है वो आप RJ फातिमा खान के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी कॉमेंट कर सकते हैं, वहां पर भी हमने स्टेटस जो है वो अपडेट कर दिया है। और आप अपने लंच में क्या है ये हमें जरूर बताएं, क्योंकि भाई प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल है, तो जिक्र लंच ना हो ये तो भाई मुमकिन ही नहीं है। तो आपके लंच में क्या है, क्या पक चुका है, क्या पकाने का इरादा है, अपने लंच में हमें जरूर बताएं, या फिर आपका लंच पक चुका है, आप करने की देरी है, या फिर बस अभी अभी कर बैठे हैं, क्योंकि जी ये लंच का जो ये टाइम होता है आपका 12 से 2 के दरमियान ये आप हमारे साथ गुजारते हैं, तो आपके लंच में क्या है हमें जरूर बताएं। रशीद खान तो बता चुके हैं कि वो कोरमा खा रहे हैं, उसी के साथ साथ हमारे पास मैसेज आ चुका है, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम लवली RJ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसी हैं? कहती है मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, फ्लू है, बुरा हाल है, आज लंच में मूंग की दाल बनाई है। अरे वाह, जबरदस्त हो गया, मूंग की दाल तो अच्छी लगती है। और ये जो आप फ्लू वाली बात कह रही है ना, ये हर तरफ हर जाने फैला हुआ है, छोटे बच्चों को भी हो रहा है, छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े भी इससे मुतासर हो रहे हैं, और मैं तो अभी तक खुदा का शुक्र अदा कर रही हूं कि मैं इससे कैसे बची हुई हूं, क्योंकि ये है कि ऑलमोस्ट हर घर में ना इस वक्त ये हो रहा है, नजला, फ्लू, खांसी, ये सब चल रहा है। ऐसे में थोड़ा वेदर भी ऐसा है जिस वजह से ये हो रहा है, थोड़ा ड्राई वेदर भी है इस वक्त, एक जानब हवा भी चल रही है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी ड्राइनेस है जिसकी वजह से हम लोग इसका शिकार हो रहे हैं। तो गॉड ब्लेस यू, जल्दी आप ठीक हों। इसी के साथ साथ जो है वो नजीर खोसो ने भी हमें हमारे जो है RJ फातिमा खान के पेज पे कमेंट किया है, ऑल राइट, इन्हें भी हम खुश आमदीद कहते हैं। कहती हैं प्लीज कोई रहीम शाह का सॉन्ग लगा दीजिएगा। ओके, प्ले कर देंगे हम, डोंट वरी। लेकिन इस वक्त जो आपकी सूरत हाल है वो बड़ी गमगीन है, क्योंकि आपको फ्लू है, और इस फ्लू के गमगीन मौके पर हम आपको ना रहीम शाह का ये गमगीन सा ट्रैक ही डेडिकेट कर रहे हैं, आप इसे एंजॉय करें, फिर वापस आकर आपसे बात करते हैं। ऑल राइट जी, लंच में क्या है हमें जरूर बताएं।

0: This program is brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.
2: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
3: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
4: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
3: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
4: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
2: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
7: Join Fatima Khan.
6: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
7: Midday break a blast.

कराची जो है वो एक बार फिर से चमक उठेगा, सारी रोडें सड़कें बेहतर हो जाएंगी, दरख्त नजर आएंगे आपको और उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, कुछ देर पहले भी मैं इस मौजू पर बात कर रही थी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे कि हमारा कराची वापस वैसे ही जगमगाने लगे। और इसी के साथ साथ आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, आरजे फातिमा खान के फेसबुक पेज पर आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं और उसी के साथ साथ जो है वो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, केयर ट्राई लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। जब तक हम भी चलते हैं एक ट्रैक की जानेब और आते हैं वापस इस ट्रैक के बाद।

0: FM 100's time check. It's 2 p.m. अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ। This program is brought to you by
1: Step School से Foundation हो Strong. Call now at 0311-111-7837.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
2: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है। वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
3: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
4: हमारी जिम्मेदारी है।
5: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
7: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: This program is brought to you by
2: Step School से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111117837।
3: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा।
4: हमारे माशरे में जिंसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया। अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिंसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें। वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
8: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रूपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रूपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
1: 100 FM।
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
1: 100 FM।
3: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
5: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना, अभी जैज़ कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज़ कैश है ना।
1: 100 FM।
6: चम चम चम, किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: This program is brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: FM 100's time check. It's 3 p.m. This program was brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
2: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
3: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: तमाम चीजों पर समझौता क्यों करें। शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
1: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए। वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ।
2: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 247/365

0: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: 100 FM।
0: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: अभी इजी

0: FM 100's time check. It's 4 p.m.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365. FM 100.
3: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.

0: 100 FM.
1: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशंस ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
4: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं.
3: मतलब
4: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ.
3: स्पेशल तो लग रही है.
4: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
3: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं. एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड.
0: This program is brought to you by
5: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
6: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: वाला बैंक।
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
2: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 03003641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा।
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
5: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
4: मतलब
5: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
4: Special to lag rahi hai.
5: Aur price sirf 64,49,000.
4: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
6: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
8: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत और जवाबित लागू हैं।
9: 100 FM।
10: चम चम चम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: your location for maximum music. It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311117837.
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
4: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं.
3: मतलब?
4: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ.
3: स्पेशल तो लग रही है.
4: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
3: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं. एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड.
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
0: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ.
6: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
7: PTCL Flash Fiber आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत सवाबित लागू है.
0: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
8: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
9: एंड सरसब्स नाइट्रो फॉल्स को लगा और जीत ताजा.
10: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है.
11: हमने अपने आप को 3 बार मौत देखा.
12: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा.
13: फिर उन्होंने साड़ियाँ वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया.
10: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें.
14: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा.
10: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क्याम. मुलगीर क्रैकडाउन जारी. एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं. अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें. मकामात मुकद्दसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें. इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचे. ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने. हुकूमत पाकिस्तान.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
15: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں۔ جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں۔ اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں۔ اکاؤنٹس میں مضبوط سیکورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز۔ ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے۔ بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
16: facebook.com/fm247365 FM247365

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
2: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत जवाबित लागू है।
1: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
1: and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
4: Bain al-aqwami safar par rawana hone wale mutawajjo hoon, aise online apps aur platforms se ijtinab kare jo paison ki ivaz kisi namaloom shakhs ka saman aapke apne saman ke sath le jane ke liye karte hain. यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
7: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
8: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
9: ہماری ذمہ داری ہے۔
10: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: Like us on facebook.com/fm247365
11: fm247365 fm100
1: 31 saal fm100 aapki awaaz. Assalamu alaikum pakistan,
11: assalamu alaikum pakistan, pakistan.
12: Music has no name.
13: Music has no name.
12: Music has

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
2: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
3: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
2: मतलब
3: इमेजिन पुश स्टार्ट मल्टीपल ड्राइव मोड्स क्रूज कंट्रोल पावर ड्राइवर सीट एलॉय रिम्स और सनरूफ।
2: स्पेशल तो लग रही है।
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
2: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
0: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
4: Step School से foundation हो strong. Step Schools दे रहा है modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
5: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की help करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
0: This program is brought to you by
6: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
7: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ja.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
8: FM 247.
9: 365. Enjoy your favorite music, uninterrupted.
10: Uninterrupted.
11: Enjoy your favorite music, uninterrupted.
9: You're listening FM.

0: बैंक। अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैस कैश ऐप नाउ।
1: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत सवाबित लागू है।
2: 100 FM।
3: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311117837.
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
4: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
5: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
4: मतलब?
5: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims और sunroof.
4: स्पेशल तो लग रही है।
5: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
4: अब समझ आया, इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
6: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
7: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf rupees 4,999 mein aur paaye free shock Android TV box worth rupees 15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hai.
0: This program is brought to you by
8: Phoenix Laga aur Bhul Ja, Phoenix Laga aur Bhul Ja,
9: and Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
10: 100 FM.
11: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Yeh paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
10: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
12: FM 247365.
13: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
14: Only music, no RJ talk.
13: This is FM.

0: FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by Phoenix Laga aur Bhul Ja, Phoenix Laga aur Bhul Ja, and Sarsabz Nitro Falls ko laga aur jeetta ja.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: अभी इसी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का

0: Digital bank, easy wala bank.
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए चैट कैश है ना.
4: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
2: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
5: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
6: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त जवाबित लागू है.
7: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
8: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
9: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
10: FM 247365.
11: This is your music.

0: वाला बैंक।
1: जैक कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैक कैश अकाउंट में 15,000 रूपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रूपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैक कैश है ना।
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
4: 100 FM।
5: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
6: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
7: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
9: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
10: PDCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑलनेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPDCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत जवाबित लागू है।
4: 100 FM।
11: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: FM 100's time check. It's 8 p.m.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
2: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड जैस कैश ऐप नाउ।
3: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं, कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत सवाबित लागू है।
4: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
5: facebook.com/fm247365 fm247365
6: fm100 31 साल fm100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान,
7: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
1: मंशियात, एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की तबाही। आइस, हेरोइन, चर्स या किसी भी किस्म की मंशियात, ये वक्ती खुशी नहीं मुस्तकिल अजियत है। ये जिस्म को कमजोर करती हैं, जहन को मफरूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं। एक आदत एक खानदान की खुशियां छीन लेती है। इंसदाद मंशियात फोर्स का पैगाम, मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हमारा अज़्म मजबूत है। आइए अहद करें, अपने नौजवानों को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। 26 जून आलमी दिन बराए इंसदाद मंशियात।

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 24/7/365

0: Check one.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
2: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
3: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
4: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
5: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
6: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV box worth ₹15,000, free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye, 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hai.
7: 100 FM.
8: चम चम चम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: FM 100's time check. It's 9 PM.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए चैट कैश है ना।
2: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
3: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत जवाबित लागू हैं।
4: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
5: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए कहें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
8: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
9: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
10: हमारी जिम्मेदारी है।
11: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: Like us on facebook.com/fm247365.
12: Let's celebrate
13: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
12: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
14: This is your music.

dedication for maximum music.

हेलो माइक चेक 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान सभी सुनने वालों को अयाज अहमद की जानिब से आदाब। क्या हाल है, कैसे मिजाज शरीफ और कैसी तबीयत? सुन रहे हैं 100 और साथ साथ जनाब मैसेज भी मुझे करते के चाहे स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड कर देंगे 3636 पर। हमेशा की तरह नदीम अंसारी भाई हमारे साथ। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है, कैसे मिजाज? नदीम भाई इधर जरा तशरीफ लाइएगा सर। नदीम भाई को मैं तंग करता रहता हूँ जब भी मैं आता हूँ यहाँ। नदीम अंसारी हमारे प्यारे से इंजीनियर, उस्मान दी ग्रेट हमारे टेक्निकल हेड, मोहम्मद अली को कैसे भूल सकते हैं, और इसके अलावा पूरी टीम हमारी। नदीम भाई जरा ये देखिए। अच्छा जनाब, मंडे और मंडे वाले दिन मैं आप लोगों को सुनाता हूँ पुराने गाने, ओल्ड इज गोल्ड। फिल्मी गाने होते हैं, गजलें होती हैं, और कुछ पुराने पीटीवी के दौर के गाने भी हो सकते हैं, जैसे शिकी भाई हो गए, आलमगीर साहब हो गए, बहुत सारे। तो फरमाइश करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि क्यों शीट हमारी बनी हुई है। अच्छा जी, इसके अलावा हमेशा की तरह रिवायती मैसेज कि गाड़ी चला रहे हो, इत्मीनान सुकून, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। तो जनाब बारिश वैसे तो नहीं हो रही, लेकिन फिर भी रिमझिम रिमझिम वाले गाने जरा शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में, और शामिल करेंगे मैडम नूर जहां को।

जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी कर रहे हैं आप लोग। अच्छा जनाब, मैसेज बिल्कुल शामिल करता हूँ, लेकिन इस वक्त मुजीब आलम साहब का मैंने लिटरली आज पहली दफा सुना। पाकिस्तानी फिल्मों के इतने गाने हैं दोस्तों, इतने ट्रैक्स हैं, सब नहीं सुने। अच्छा, जो पाकिस्तानी फिल्मों के गाने के शौकीन है उन्होंने तो यकीन सुना होगा, लेकिन मैं अपनी बात बताऊं कि मैंने पहली दफा सुना लेकिन अच्छा लगा मुझे। और आज मुजीब आलम का ये जो ट्रैक है वो मैंने अपने क्यू शीट में शामिल किया, तो जरा चेक करें और उसके बाद वापस आते हैं और आपके मैसेज में पढ़ता हूँ। इंजॉय करें इस खूबसूरत ट्रैक को।

है जनाब, वेलकम बैक टू एफएम 100 और साथ ही साथ मैसेजेस आपके पहुंच रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा, वो एक अलग बात है। अच्छा जनाब, मैसेंजर पर भी मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, कैसे हैं आप? आपको आपकी फैमिली को ढेरों दुआएं और सलाम, एफएम 100 की पूरी फैमिली, तमाम लिसनर्स और टीम को भी दिल से सलाम। वालेकुम सलाम सुबल जी, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से है? यानी भी अयाज भाई, आपका शो 14 अगस्त को देखा। अच्छा, वो मसाला टीवी की बात करी भी, मसाला टीवी में हमारा एक शो आया था। करीबी आप बहुत अच्छे लग रहे थे और शो भी अच्छा था, एंजॉय किया और इतनी सारी दुआएं लिख दी। थैंक यू वेरी मच सुम्बल जी, बहुत शुक्रिया और आपके लिए हमेशा बेस्ट विशेज और प्रेयर्स। थैंक्स अ लॉट जनाब, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया। फैमिली के लिए भी दुआएं लिख दी, क्या बात है जनाब, क्या बात है। मुश्क लैला आ गई है भाई, मुश्क लैला वालेकुम सलाम। और ये भी कह रही है, शेफ जर्निक के साथ फूड डायरी शो देखा और ऑसम शो था, आपका नटखट अंदाज देखकर अच्छा लगा है। सो स्वीट मुश्क लैला जी, बड़ी मेहरबानी, प्यार है आप लोगों का, मोहब्बतें हैं। मुझी मालम का सॉन्ग जबरदस्त है। किंग आप कैसे? मैं वैसे का वैसा ही हूँ, फर्क नहीं पड़ रहा मुझ पे, लेकिन आप लोगों की दुआएं चाहिए होती है। अच्छा जनाब, अब जरा नेक्स्ट ट्रैक की जाने, फिर शामिल करेंगे रूना लैला जी को। और क्या बात है रूना जी की,

0: Thursday to Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना.
3: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना. अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना.
4: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ.
5: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना.
6: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ.
7: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शरात सवाबित लागू है.
8: 100 FM.
9: चम चम चम, किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम.

सनराइज जनाब, वेलकम बैक। सुन रहे हैं फ्रॉम 100 और साथ ही साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं। और मिसेस फारूक, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मजे में हैं। इतनी सारी दुआएं, इतना सारा प्यार आपने दे दिया है, बहुत शुक्रिया। आज का शो तो ओल्ड सॉन्ग्स की वजह से सुपर डुपर होगा। ये तो मिसेस फारूक, अब आप सुन के मुझे बताइएगा कि सुपर और डुपर दोनों है कि नहीं है। लेकिन कोशिश तो होती है कि गाने ऐसे हों जो आपको पसंद आ रहे हों। जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं और शामिल करेंगे फिर मैडम जी के गाने काफी सारे होते हैं हमारी क्रिकेट में।

0: it up. It's time to go with Ayaz Ahmed. The show's the star of the show.
1: Star of the show.
0: Full volume, 9 to 11, Sunday to Friday.
1: Full volume.
0: It's a party that won't end. On FM 100, turn it up, let the music begin.
1: FM 100's where the vibes are proud.
2: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ.
4: PDCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagai sirf ₹4,999 mein. Aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPDCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat aur zawabit lagu hain.
5: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
7: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें. मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है. इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे. सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें. जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#. अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए.
8: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
9: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन
7: کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے. یاد رکھیں اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے. لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں, شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناطرا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو. اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں. شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. دیکھیے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پر عزم ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے.
9: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Active Yummy Adorable Zabardast Ye pyaar to suno yaar.

जनाब, वेलकम बैक। सुन रहे हैं फिल्म 100 और साथ साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं। अच्छा जनाब, बाबा रूना लैला का सॉन्ग सुनकर संजू याद आ रही। भाई संजीदा आज नजर नहीं आ रही, पता नहीं, खैर बिजी होगी कहीं ना कहीं। और ये सॉन्ग संजू के लिए, थैंक्स, बड़ी मेहरबानी, आपका भी बहुत शुक्रिया। जरी नूर आ गई है, सलाम, कैसे हैं सबको? सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं जरी नूर, कैसी तबीयत है? ठीक है, मजे में है। सुंदर समय सुन रही है। सुंदर जी, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं। और सुंदर जो है वो मिसेस फारूक का जो है वो पूछ रही है। मिस्टर फारूक जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। और जनाब गाने में आपको सुना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जरा हिट ट्रैक हो, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे गाने भी हैं जो पहली पहली दफा सुनते हैं लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं सोचता हूँ हिट क्यों नहीं हो रही, कोई ना कोई वजह तो होगी। लेकिन अभी जो मैं आपको ट्रैक सुनाने वाला हूँ वो तो बहुत ही हिट गाना है। और जब भी मैं अहमद रुश्दी का गाना लगाता हूँ, फुप्पा मेरे प्यारे से, वो मुझे याद आते हैं, उनकी बातें याद आती हैं। तो फुप्पा अगर सुन रहे हैं, आपकी तरफ से किसी को भी डेडिकेट करने आप।

ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक टू एफएम 100। और भाई मैसेज पहुंच गए हैं अय्यूब आफरीदी भाई के भी। नाइस अयाज, आपको सबगुल मुश्क महनूर हिना को और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और कह रहे हैं सबगुल मुश्क और हिना के नाम अपनी पसंद का कोई भी सॉन्ग जो है वो प्ले कर दो। ठीक हो गया सरकार। अय्यूब भाई बहुत

ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक टू एफएम 100। और भाई मैसेज पहुंच गए हैं अय्यूब आफरीदी भाई के भी। नाइस अयाज, आपको सबागुल मुश्क महनूर हिना को और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और कह रहे हैं सबागुल मुश्क और हिना के नाम अपनी पसंद का कोई भी सॉन्ग जो है वो प्ले कर दो। ठीक हो गया सरकार। अय्यूब भाई बहुत शुक्रिया। अय्यूब भाई तबीयत कैसी है? मजे में है, ठीक है। अच्छा जनाब, सुंदर जी जो है वो अभी हमें कह रही है भाई भाई कोई बात नहीं, और सुपर हिट है, प्लेलिस्ट सुपर हिट है भाई। जहां रहे खुश रहे भाई, इंसान मसरूफ भी होता है, कहीं शादियां, कभी कुछ, कभी कहीं जाना आना, कुछ भी, तो जरूरी तो नहीं कि 24 घंटे वो एफएम सुनता रहे, ये भी बात है। तो कभी कभी जब वो बिजी होते हैं तो फिर जाहिर सी बात है नहीं सुन पाते, मैसेज नहीं कर पाते। लेकिन एक चीज है, आप लोग सब उनको याद करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो फैमिली है वाकई सही मानो में दिल से एक दूसरे का ख्याल करते हैं। अच्छा जनाब, अय्यूब भाई की तरफ से जो जो नाम लिए उन्होंने, उन सबको ये गाना जो है अय्यूब भाई की तरफ से मैं डेडिकेट कर देता हूं। और वो है कैसे,

0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
0: facebook.com/fm247365

मैं जना वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी आपके पहुंच रहे हैं और मैं शामिल कर रहा हूँ, पूरी कोशिश है। लेकिन कुछ लोग नाराज हो रहे हैं कि 3636 वाले मैसेज क्यों नहीं आ रहे। बस कभी कभी बड़े शहरों में ये छोटी छोटी चीजें हो जाती, तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना। और मुश्क क्या कहनी भाई, और कहनी किंग थैंक्स, बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया है, आपकी वजह से हम अच्छी फैमिली है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, साफ सुथरी अच्छी फैमिली हम लोगों की। अच्छा जनाब, इसके अलावा हमें सुन रहे हैं भाई रेहान, हमें सुन रहे हैं रेहान, कैसे हो मेरे भाई, ठीक हो, खैरियत से, हमारे बहुत प्यारे से दोस्त। और रेहान भाई ने जो गाना लिखा है भाई जन, आज तरह पुराने पुराने फिल्मी गाने पाकिस्तानी, ये जब मैं नए गाने जब प्ले करता हूँ ना, जैसे कल का दिन होता है, उसमें जो है मैं आपको कोशिश करूंगा जरा वो सुना। अच्छा जनाब, सुंदर जी सुन रही है, सुंदर जी के लिए अच्छा सा ट्रैक जो है वो मैंने डेडिकेट करना है, कौन सा कर दूं, सारे इतने कोई प्यारे प्यारे रोमांटिक गाने लिखे हुए। अच्छा वैसे एक बात है, एक जमाने में यानी पाकिस्तानी फिल्मी जो गाने थे रोमांटिक होते तो एंड होते थे यार, और अगर दुखी होते तो ऐसा कि बस बंदा कहे कि मैयत में पहुंचा हुआ, इतना दुख बंदे के आंसू जो है ना रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ये था एक दौर, शायरी ऐसी कमाल। तो ये गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो सुंदर जी आप ही को हम डेडिकेट कर देते हैं। और वो है कैसे,

जनाब मैसेजेस पहुंच रहे हैं लेकिन काफी सारे मैसेज इधर उधर भी हो जाते हैं, तो मैं माजरा चाहता हूं जिनके मैसेज में शामिल नहीं कर पाता, तो प्लीज माइंड मत किया करें, अगेन दोबारा कर दिया करें, अगर मैंने मैसेज नहीं पढ़ा तो दोबारा आप मुझे सेंड कर दिया करें। सी बात है, आदमी इतने प्यार से सीमा बाबर ही मैं बोलूं यार, एक मैसेज मुझसे मिस हो रहा है और वो है सीमा बाबर। सीमा बाबर जी कैसी हैं आप, ठीक हैं खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। और जब सुनती हैं मैसेज करती हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जनाब, गाने मैं आपको सुना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, हिट गाने तो मैं आपको सुनाते रहता हूँ, लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जो पहली पहली दफा सुनता हूँ और मैं हैरान होता हूँ, इतने अच्छे गाने। एक माला जी का भी आज मैंने गाना सुना और वो भी मैंने क्यू शीट में रखा है, जरा चेक करें आप, हो सकता है आपका सुना हो, मैंने तो पहली दफा सुना।

हाँ हाँ क्या बात है, जा जा रहे चंदा जा रहे, क्या खूबसूरत शायरी, क्या खूबसूरत अंदाज माला जी का। पुराने गाने, पुरानी यादें, वाह वाह क्या बात है जनाब। और रेडियो का वो दौर भी याद आने लग जाता है, पुराने वक्तों के रेडियो नहीं होते जब सूटकेस की शक्ल के, वो अजीब से होते थे, लेकिन ये है कि अक्सर वो खराब हो जाते थे, लोग थप्पड़ मार रहे थे साइड पे, फिर कहीं जाके फिर वो भी डीट, वो भी चल रहा है। उसने कभी ये नहीं हार मानी हो कि मैं चुप हो जाऊं ना, दो थप्पड़ों पे स्टार्ट, या तो पता नहीं बैटरी कमजोर हो जाती है क्या चक्कर था। तो वो वाले भी रेडियो याद आते हैं। इसके अलावा जनाब पुरानी पुरानी खाने की जगहें सदर में खास तौर पे, ओए कैफे स्टूडेंट याद आ गया यार, किस किस को याद है कैफे स्टूडेंट। अच्छा इतनी अच्छी वहां पे वो बिरयानी शिरयानी होती थी, अब मेरे ख्याल से फारिग होगी क्या है चक्कर। मैंने एक बात नोट की, जब तक वो ओरिजिनल फॉर्म में होती कोई चीज वो सही रहती है, उसका टेस्ट भी, ये भी, जैसे ही वो कमर्शियलाइज हुआ, जैसे ही उसकी उन्होंने साफ सुथरी बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दी, टेस्ट कहीं गुम हो गया। क्या मेरी बात में वजन है या सिर्फ मैं अकेला वजन में हूं? चलिए बहरहाल कोई बात नहीं, मेरा काम है बता देना, आगे यकीन करना ना करना वो आपका काम है। अच्छा जनाब एक और बहुत मैडम जी का बड़ा ही प्यारा गाना, जरा चेक करें आप।

0: It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें. चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना.
3: 100 FM
4: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना.
3: 100 FM
5: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना. अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली गैस पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना.
6: FM 24/7 365 FM 24/7 365
7: Active, yummy, adorable, zabardast. Say I've got a crush on you.
8: Ye pyaas to suno yaar.
9: Ye pyaas to suno yaar.
7: Say I've got a crush on you.
10: वेलकम बैक. सुन रहे हैं FM 100 अयाज अहमद के साथ और साथ ही साथ प्यार से मैसेजेस. फरीदा बुरहानुद्दीन भी आ गई हैं और इतनी सारी दुआएं. सलाम बेटा, मैं फरीदा बुरहानुद्दीन हूँ. कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, तबीयत भी अल्लाह का शुक्र. सॉन्ग सुपर डुपर है, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी. और फोन अभी तक मैं कह रहा हूँ बस हम लोग ठीक है, ये बड़ी बात है. इसके अलावा अयाज भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, स्टूडेंट बिरयानी भारी. अरे यार भाई, ऐसा ना हो कि उनका नाम ज्यादा ले लें हम. भाई बात यह है कि अच्छी अच्छी चीजें जब खराब होती हैं तो जरा लोगों को प्रॉब्लम होती है. अच्छा जनाब, इसके अलावा और पुरानी चीजों को मैं बता रहा था आपको, स्टूडेंट का तो जिक्र किया. एक अच्छी तारीफ निहारी के जो शौकीन लोग हैं उनको बताऊं मैं. इदरीस की निहारी बड़ी मशहूर है भाई. ये कौन सा डेंसो हॉल वगैरह उस वाली साइड पे, रणछोड़ लाइन वाली जगह, वहां अगर आप जाएं तो इदरीस की निहारी जरूर ट्राई. वो भी मैंने सुना, बड़ी तारीफ. मैंने अभी तक नहीं खाई जो सच्ची बात. लेकिन लोग कहते हैं भाई जो निहारी खाने वाले वो वहां जाके खाए, सारी निहारियां भूल जाएंगे. एक बात है, निहारी खाना भी हिम्मत की बात है, इसको अवार्ड देना चाहिए. और खासतौर पर रात में खा के और सो जाना, एसिडिटी की पूरी फैक्ट्री. तो कोशिश करें दिन में खाएं, सुबह में खाएं, ताकि उसको आप प्रॉपर हजम भी कर सकें. अच्छा जन आए मिसेस फारूक कह रही प्रॉपर वजन है, पूरा वजन. बड़ी मेहरबानी मिसेस फारूक, बहुत शुक्रिया. असगर साहब हमें सुन रहे हैं और असगर साहब आपका प्यार, आपकी मोहब्बतें मैं हमेशा याद रखता हूँ. और आप इस नाचीज को इतना प्यार देते हैं, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, आपने बचपन की याद दिला दी फरीदा बुरहानुद्दीन, अभी तो मैं आपको याद दिलाने वाला हूँ. ये एक खातून और है, इनका भी मैंने नाम पहली दफा, अब आप बोलेंगे यार मैं ऐसा पहली बार. कुछ हैं गाने, बहुत सारे ऐसे गाने मैंने नहीं सुने, ये मेरी कोताही भी हो सकती है. ये यूं समझे कि कभी होता ना इंटरेस्ट, उस दौर में इतना नहीं था मुझे. तो नजमा न्याजी भी एक बड़ी जबरदस्त सिंगर गुजरी है और इनका ये ट्रैक जो कि मेरे प्रोग्राम में पहली दफा प्ले हो रहा है, ये जो गाना है चेक करें आप, बड़ा अच्छा गाना लगा मुझे तो.

जबरदस्त। और असगर साहब बहुत शुक्रिया, छोटी सी गलती जो कि मैं ऑनर ही सही हूँ। देखो सही जो बात है ना ऑनर कर देनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे नजमा नियाजी लिखा है, असगर साहब ने कहा नहीं सरकार नाहिद नियाजी। और मैं जब ये गाना प्ले कर रहा हूँ आवाज सुन रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हाँ यार ये आवाज तो सुनी भी लग रही है, लेकिन नजमा नियाजी तो मैंने पहले दफा सुना। लेकिन जो ही नाहिद नियाजी असगर साहब ने याद दिलाया, हाय हाय असगर साहब बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब सॉन्ग लग रहा है कि पुराना इंडियन आज मुझे क्या हुआ। अच्छा जनाब ये वैसे हवा की स्टाइल उस दौर में जो 50s के अगर गाने सुने ना आप, इंडिया के गाने हो या पाकिस्तान के गाने एक जैसे ही हैं। अगर आप 50s के दौर के इंडियन गाने भी अगर लगाएं पहचान नहीं सकता कोई, और मेरे ख्याल से मैडम जी ने तो गाए भी। पता नहीं क्यों ये दीवार आ गई है बीच में, क्यों ये पाबंदियां आ गई हैं, वरना क्या है जबरदस्त सिंगर वहां के, जबरदस्त सिंगर थे यार रफी जी तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट। अगर ये पुराने गानों को सिलसिला मेहंदी हसन के साथ रफी साहब को भी हम प्ले करते, लेकिन अभी तो नहीं प्ले कर सकते। चलो खैर कोई नहीं, हमारे पास अभी भी बहुत जखीरा है।

अच्छा जनाब, इस गाने में सारी जबरदस्त और फिट रखे में सोच रहा हूँ कौन सा लगाऊं और कौन सा ना लगाऊं। एक जरा स्लो गाना मैं लगाता हूँ और ये बहुत ही मेलोडियस ट्रैक, बहुत ही कुछ थोड़ा सा दुख भी है लेकिन बहुत कमाल गाना।

0: वाह जनाब वेलकम बैक। गाने तो बहुत सारे हैं लेकिन इतने अजीम और प्यारे शख्सियत का जो है ना वो फोन आ गया है, तो मैंने सोचा यार मैं अकेले क्यों बात कर रहा हूँ। इतनी प्यारी आवाज, इतने खूबसूरत आरजे और जो क्लासिक गाने हैं इनकी जो नॉलेज है वो इनसे ज्यादा किसी को नहीं। तो मुजफ्फर अहमद भाई को हम वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर।
1: वालेकुम अस्सलाम अय्याज, बहुत खुशी हुई आज बड़े अच्छे गाने प्ले कर रहे हैं आप।
0: बहुत
1: और मैंने जो खास तौर पे आपको जहमत दी है वो इसलिए दी है, एक पसंद आवाज आ रही है गाने की।
0: जी जी,
1: ऑन एयर चुपमा का गाना चल रहा है।
0: जी जी,
1: तो कहना ये था कि ये जो भी आपने नजमा न्याजी ही है, वो नाहिद न्याजी हरकिश नहीं है।
0: असगर साहब, असगर साहब,
1: नजमा न्याजी है और ये वहीदराज की पिक्चर थी, उसकी डिटेल में मैं आपको भेज दूंगा, जिसने कहा है कि नाहिद न्याजी बिल्कुल गलत कहा। नजमा न्याजी उनकी बहन, उनकी बहन है।
0: चले जनाब, क्या बात है, क्या बात है। ये बताए सर किधर शॉट है, किधर गायब है, क्या कर रहे हैं, क्या मतलब है?
1: मैं 105 पे कर रहा हूँ शो। लेकिन पहले दो शो करता था, एक तो एक क्लासिक सॉन्ग का रात को करता था, रात के वक्त,
0: ठीक है।
1: लेकिन ये कि मैं बैरियर टोन शिफ्ट हो गया हूँ।
0: ओ तो खैर, मैं तो कह रहा हूँ वहीं से वहाँ स्टूडियो बना लिया, वहाँ पे शुरू कर रहा
1: हूँ। तो मैं सिर्फ संडे मॉर्निंग का शो कर रहा हूँ, संडे मॉर्निंग का प्रोग्राम करता हूँ 11 से 1 बजे तक बस।
0: अच्छा, तो बेचारे फैन तो उदास होते होंगे कि मुजफ्फर भाई की आवाज क्यों नहीं हमें सुनाई देती। मुजफ्फर साहब, आवाज आ रही मेरी कि नहीं आ रही?
1: अच्छा,
0: मैं कह रहा हूँ फैन उदास नहीं हो गए आपके बगैर, आपकी आवाज सुने बगैर?
1: आप जरा मुझे, मैं जरा होल्ड करता हूँ जरा सा।
0: ठीक। मुजफ्फर साहब को मैंने जो है ना आज ऑन एयर ही ले लिया है, और खासतौर पर ये जो गाने होते हैं जो पुराने क्लासिक, इनके ये चैंपियन है। सही मानों में इनको सारे गानों का इल्म होता है। असगर भाई, तुसी मैनू एम जी गलत रिपोर्ट दे देती। लेकिन ये है कि उनकी बहन है तो आवाज भी मिलती है। जी जी जी सर,
1: मतलब आवाज है ये नजमा न्याजी है। इन्होंने बहुत सारे गाने हैं, खासतौर पे अरमान फिल्म में गाने गाए इन्होंने, वहीदराज की बहुत सारी पिक्चर्स में, और सुहेल राणा ने इनको गवाया है बहुत सारी फिल्मों में।
0: क्या बात,
1: बहुत अच्छे अच्छे गाने। लेकिन ये गाना भी हम जो प्ले किया है ये भी रिमिक्स था, ओरिजिनल साउंड ट्रैक नहीं था।
0: अच्छा,
1: लेकिन बहरहाल मुझे खुशी हुई कि आप जो है ये पुराने गाने जो है ये प्ले कर रहे हैं, तो ये कम से कम लोगों को एक तरह से खराज तहसीन है, खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ।
0: लव यू सर, लव यू सर। आप ही से सीखा सर, मैं तो आप ही से सीखता रहता हूँ, आप ही का शागिर्द हूँ।
1: मैं आपसे सीखता हूँ, आपको कभी कभी मौका मिलता है तो सुन लेता हूँ। लेकिन अभी ये बात किसी ने कही, इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि ये नहीं, वो नहीं है, ये बिल्कुल गलत था, ये नजमा न्याजी है। ठीक है,
0: चलिए जनाब, बड़ी मेहरबानी।
1: खुश रहिए यार, इसी तरह शो करते रहिए, लोगों को खुश करते रहिए। बहुत शुक्रिया सर।
0: ओके, बहुत अल्लाह हाफिज़। भाई जनाब मुजफ्फर भाई हमारे प्यारे से पहले FM 100 में होते थे, और मुझे याद है कुछ शोज हमने साथ भी किए थे, कंबाइन शो। मुजफ्फर साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला, पुराने गाने, उनकी नॉलेज, उनका तलफ्फुज़, क्या क्या चीजें, मैं किस किस बात का जिक्र करूं, मैं तो माटा हूं उनके आगे बिल्कुल, जो सच्ची बात है। तो बहुत शुक्रिया, आप मुझे सुनते हैं। और लेकिन एक बात है, जो आपने कहा ना कि आप बहरिया टाउन शिफ्ट हो गए, तो बेचारे जो फैन है वो परेशान होते होंगे, मुजफ्फर भाई की आवाज ही नहीं सुनाई देती। और पुराने गाने तो खास तौर पे आपकी पहचान है। चलिए जनाब, कोई नहीं, संडे को आप आते हैं यही बहुत है। अच्छा जनाब, एक और ट्रैक, खूबसूरत ट्रैक, ये भी अपने वक्त का हिट गाना।

0: स्टेशन पर मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाथ है। आइए इस खतरे के खिलाफ मुख्य नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान AMF का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 247365

जना वेलकम बैक, सुन रहे हैं 100.77। मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं 3636 पर। और क्या बात है, मुजफ्फर भाई ने पूरी डिटेल दे दी है और असगर साहब ने माजरत का फोन भी कर लिया मुझे। उन्होंने कहा मैं माफी चाहता हूं, मुझे बाद में पता चल गया था। और मुजफ्फर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि नजमा नियाजी ही है। इसका मतलब जो लिखा हुआ सही लिखा हुआ है, हो जाता खैर कभी कभी। और इसके अलावा कंपोजर सुहेल राणा, बिल्कुल सही बात है, पूरी डिटेल लिख दी है। आज मुझे क्या हुआ। अच्छा जनाब, फुप्पा में कॉल कर रहे हैं। फुप्पा कह रहे हैं कि भाई बहुत शुक्रिया कि आपने जो है मुजफ्फर साहब को ऑन एयर बात की, हमें आवाज सुनाई, और इस बहाने में ये पता लग गया कि संडे को 11 बजे वो तशरीफ लाते हैं। मुजफ्फर साहब को ऐलान कराए पूरे 11 बजे सुबह ना, जरा मुजफ्फर साहब डिटेल बताएं मुझे। 11 बजे सुबह 105 पे आ जाते हैं, तो जो इनके फैन है वो याद से 11 बजे जो है वो चैनल लगा लें। मुश्किल है अभी गानों के बारे में जो है वो खुश हो रही है, और मुजफ्फर साहब की इन्फॉर्मेशन गुड है। चले जाना, बड़ी मेहरबानी। और मिसेस फारूक जो है सलाम कह रही है मुजफ्फर साहब को। मुजफ्फर साहब छा गए आप तो भाई, आए हैं आ गया तो छा गया हटा करके। अच्छा जनाब, क्योंकि फुप्पा आए हैं और इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतने खुलूस के साथ, चेक करें फुप्पा ये गाना भी सुना है कि नहीं सुना।

अच्छा ना बाबा, अभी जाओ, कौन सी बस में बैठ गए, आ नहीं रहे तुम। लेकिन बेहतरीन बेहतरीन गाने यार। अच्छा जी, मुजफ्फर साहब कह रहे हैं सुबह 11 बजे से 1 बजे तक हर इतवार को। ठीक हो गया जनाब, बेहतरीन हो गया काम। हाँ, एक और गाना याद आ गया मुझे यार, ये नैयर साहब भी कमाल सिंगर थे, मैं आपको बता दूं। ये वैसे उस जमाने के सारे सिंगर ही बहुत आलत है।

0: चला।
1: क्या बात है, तबीयत से जल गया एक आदमी फुल टाइम, बहुत हटी है इनकी बात। लेकिन भाई वाकई में गाने थे तो ये थे, आसिफ भाई हमारे प्यारे से दोस्त जब सुनते हैं मैसेज भी करते हैं, और वो इतने सुंदर अल्फाज थे, इतने प्यारे अल्फाज थे कि मैं ऑन एयर नहीं कह सकता। कहने भाई ये आजकल के कोई सिंगर है, आगे जो कहा वो मैं कह नहीं सकता, कहने सिंगर ही यही थे। क्या आवाज है, क्या ड्रेसिंग है, क्या पर्सनैलिटी है। आजकल के वो किसी सिंगर का नाम बता रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे पुल के नीचे वो हिरंची नहीं होते, वो वाली ड्रेसिंग। अच्छा ये बंदा कोई भी ड्रेसिंग कर ले ना, ये आजकल के सिंगर ये फैशन में आ जाता। अच्छा जनाब ये तो बात सही है, एक और बड़ा खूबसूरत गाना था जो कि आज पूरा प्ले होने से रह गया, थोड़े थोड़े मैं प्ले कर रहा हूँ। हाँ सुंदर जी कह रही बारिश हो रही है, कहाँ हो रही है, गुलचन वाले इलाके में कहीं, कह रहे बूंदाबांदी हो रही है। मुबारक हो,

भाई लव यू। अच्छा जनाब अब टाइम आ गया टाटा बाय बाय करने का, और नदीम भाई मुझे नजर आ रहे हैं वैसे। सतार भाई नदीम है कि नहीं, झलक तो नजर आई थी मुझे। बहरहाल जनाब इसके बाद उनका शो होता है तो जबरदस्त सा वो शो करेंगे। इसी के साथ ही अयाज अहमद को दें इजाजत, और अब इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल। जाते जाते ये खूबसूरत गजल दिल की गहराइयों से आपके लिए, अयाज अहमद को दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।

Assalamu alaikum, Pakistan! मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो सोने। म्यूजिक ट्विस्टर में कहूंगा आपको खुशामदीद। आपका और मेरा साथ है जनाब एक बजे तक, और एक बजे तक करेंगे खूब अल्लाह ते गुल्ला। इस अल्ले गुल्ले में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए कि चाहे लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी गाड़ी की हेडलाइट ग्लो बीम पर रखें, बड़ी मेहरबानी होगी। ट्रैफिक सिग्नल की पास जारी भी करेंगे तो भी, यानी कि समझ रहे ना, मेहरबानी होगी। कोई ना कोई मैं सवाल फ्लोट करता हूं, आप देते हैं उसका जवाब। अगस्त का महीना है, पाकिस्तान के हवाले से करें, इतने दिनों से तो कर रहे थे। खैर जी, कोई ना कोई सवाल फ्लोट करेंगे और आप देंगे उसका जवाब 3636 पर। और उससे पहले करते हैं जनाब आपको वार्म अप, और वार्म अप करने के लिए चलता है गाना। ते आज दा पहला गाना फरमाइशी गाना है जनाब, है जी, इसमें भी फरमाइशें ही हैं। एलो फड़ो

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। और आपने जैन का ट्रैक सुना, जैनुल आबिदीन का, और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। और जनाब, इससे पहले कि मैं सवाल करूं, चंद मैसेजेस आपके पढ़ लेते हैं। हैं जी, ते हैं जी। और जनाब, सलाम टू ऑल रिश्तेदार, आज हम भी आ गए हैं सुने हो। रिश्तेदार कौन कहता है बताइएगा। आज आफ्टर लॉन्ग टाइम अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सुना है आपका। और डैशिंग, आज के दिन मेरी बात पक्की हुई थी, आज पूरा एक साल कंप्लीट हो गया माशाल्लाह से। ये है जनाब कायनात अरसलान। और आज के दिन हमेशा गिरफ्तार कर लिया गया था, हां जी। और आज फीता भी आपने काटा है, जरूर आप तो अम्मी के घर आई होंगे, या आपके वो जो है इधर उधर होंगे, यानी ये समझ रही है ना। खैर जी, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। गाहे बगाहे हमारे जितने भी पुराने लिसनर्स हैं उनका जिक्र होता रहता है। और करिए, मैं सबसे पहले आ गई, बिल्कुल जनाब आप आइए सबसे पहले, यानी कि समझ रही है ना। और उसके साथ साथ मुश्क भी आ गई है, अरे क्या बात है, क्या बात है। करिए अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। वेलकम टू द शो, आपका हर शो फन लिए होता है, एंजॉय करती हूँ। संडे शो भी अच्छा था, आपके शो के तमाम फैमिली मेंबर्स के लिए बेस्ट विशेस, चाचू चाची सवागुल मानोर हिना खान, सलीम भाई, इनाम भाई, अमीन भाई, समी भाई उनकी पत्नी यानी कि हमारी भाभी, और सब भाई बहनों को, और आपकी प्यारी सी दोस्त शो की जान फरहीन के लिए भी BW कह दें बेस्ट विशेस, और आती जाती रहा है। अच्छा, वो जहां तक ताल्लुक है, प्यारी सी दोस्त, आप सभी मेरे दोस्त हैं। फरहीन जो है वो मेरी बहुत ही प्यारी सी लिसनर भी है, और वो कभी कभार आती है दुबई से, और कभी कभी ऐसा होता है कि दो दिन साथ साथ होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि दो दो हफ्ते नहीं होती। तो इस तरह से होता है इस तरह के कामों में, यानी कि समझ रही है ना आप, या और समझाऊं। एंजल एक सोच बहुत देर से आई है, ये तो अच्छा हुआ कि 1947 में व्हाट्सएप नहीं था। अच्छा, ये मैसेज बड़ा जबरदस्त है, इस पर मैं चर्चा करूंगा, पहले चंद मैसेजेस पढ़ लूं। हैं भाई मुश्क, तुम्हारा ये मैसेज ओके ठेक किस्म का है। और आ गई है मेरी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ, और कह रही है नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है, ढेरों सलामती की दुआएं आपके लिए और तमाम हसीन तरीन समातों के लिए भी, बहुत बहुत शुक्रिया, यानी कि समझ रही है ना, शुक्रिया शुक्रिया। हाय हाय, जाने जिगर या हबीबी, आए अय्यूब आफरीदी लाला आ गए आपको, सबा गुल को, मुश्क को, महनूर को, हिना को, और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। अगर हो सके तो मुश्क, सबा गुल, महनूर और हिना के नाम प्यार भरा खूबसूरत सॉन्ग प्ले कर दे। बिल्कुल करेंगे जनाब, अगर हो सके। क्यों लिखा आपने यहाँ, तो जो लिसनर्स हैं हमारे सभी लिसनर, वो तो हक जताते हैं, हम हमने गाना चलाना है। बहुत सारे तो नाराज होते हैं, हम नाराज हो जाएंगे, हम कुट्टी हो जाएंगे, नहीं जरूर चलाएंगे आपके लिए। और एक और जनाब, क्या बात है, और कहाँ गया, हाँ ये रहा, माहिना मिर्जा आ गई है। माहिना कह रही है अस्सलाम वालेकुम FM100 की तमाम फैमिली को सलाम। वालेकुम अस्सलाम माहिना, कैसी हैं आप, मसरूफियत खत्म हुई कुछ, काफी दिनों के बाद आपका मैसेज आया है और रौनक बख्शा है इस मैसेज ने सबको। जीती रहे, मुस्कुराती रहे, शाद रहे, आबाद रहे, और हमारे साथ साथ रहे, यानी कि समझ रही है ना आप, हैं जी ते हैं जी। चले भाई, इसी बात पर आपको एक और बहुत प्यारे से ट्रैक की जानिब लेकर चलते हैं, अल्लो फड़ो।

वेलकम बैक मेहरबा हुआ ब्यूटीफुल ट्रैक ये हुमा ख्वाजा का नया गाना है और उम्मीद करता हूं कि आप सबको पसंद आया होगा। आज कोशिश यही है कि आज की क्यू शीट नए गानों से भरी हो और वो ट्रैक्स जो कि आजकल के हमारे जो सिंगर्स ने गाए हैं वो आप लोगों तक आपकी समातों तक पहुंचाया जाए। और अभी हम जा रहे हैं फिलहाल एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी ब्रेक की जाने।

वेलकम बैक कहेंगे सोने। अच्छा भाई क्या बात है, मुश सही जा रही हैं आप। और उन्होंने मैसेज मुझे दोबारा कर दिया 1947 का, अभी इसको डिलीट नहीं करना, तुम्हारी मेहरबानी होगी अभी, क्योंकि मैं इस पर चर्चा अभी नहीं कर रहा, कुछ देर में कर रहा हूं। और अभी हम जाएंगे जनाब और मैसेजेस की जानिब। और कायनात आपका मुझे पता है कि आपने जाना है, तो अभी एक दो मैसेजेस पढ़ने, उसके बाद मैंने आपके मैसेज पढ़ने और फिर आपको डेडिकेट करेंगे एक ट्रैक, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारी प्यारी सी शहजादी बहना जरी नूर आ गई है और कह रही है सलाम, कैसे हैं वाली साहब, कैसे हैं संजू को और तमाम सुनने वालों को सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और संजू कहाँ है, एफएम की रौनक और रूहे मन उनको सिर्फ मैं कहता हूँ, यानी कि समझ रही है ना, रूहे मन उनका जो है वो सिग्नेचर, तो रूहे मन जो है वो गायब हुई हुई है, तो अभी बल्कि आप बताएं ना और वो बताएं, नौरीन बताएं कहाँ है, आप लोगों की तो आपस में माशाल्लाह से बातें भी होती हैं, तो बताएं हमारी रूहे मन कहाँ है। और आगे बढ़ते हैं, फरीदा बुरहानुद्दीन आ गई है हमारी प्यारी सी बेना, के अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फरीदा बुरहानुद्दीन, सवाल का आंसर उन्होंने दिया है और पता नहीं कहां से लिख कर दिया, बड़े बड़ा फिजिक्स के हिसाब से नाप तोल के इशारी निजाम के जरिए इन्होंने जो है वो मैसेज किया, सवाल का जवाब जो के बिल्कुल दुरुस्त दिया है वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अभी फरीदा बुरहानुद्दीन ये कह दिया हमने कि आपने ओके टेक सही जवाब दिया है, लेकिन वो पढ़ेंगे हम, यानी कि समझ रही है ना, बाद में। अभी जाएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के जाने।

FM 24/7 365.

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। और अभी हम पढ़ रहे हैं जनाब मैसेज किसका, बेबी का। और बेबी क्या कहती है जनाब, बहुत कुछ कह रहे हैं, पहले इनके मैसेज सारे पढ़ रहे हैं। और कह रही है कुट्टी लफ्ज से मैं बोलती हूँ तो मैं भी तो बोलता हूँ। अब तो आपने जो बोलना था वो बस लिखा किया गया, अब आप जो है ना मिसेज अरसलान है, यानी कि समझ रहे हैं ना, अब मैं कुट्टी बोलता हूँ। और डैशिंग बीबीसी को तो बुलाएं, वो कहाँ गायब है, वो फोन की वजह से गायब है और कोई वजह नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो नजर तो आते नहीं, अगर आते होते तो जरूर वैसे ज्यादा हम उनको याद करते रहते हैं, इमरान भाई हमारे द ग्रेट। और प्यारी सी आंटी जान को मिठास भरा सलाम, वालेकुम असलाम। हमारी प्यारी सी आंटी जो है उनके लिए ढेर सारी दुआएं करना है तुमने। और जहां आंटी वाटर पंप पर रहती है वहीं मेरी नंदे भी रहती हैं दस्तगीर में, पूरा छजरा ले आओ तुम लगी उनके सामने। मैसेज पढ़ रहे ना साथ साथ पढ़ रहा हूँ, और डेडिकेशन भी करनी है अभी, बस आपकी डेडिकेशन होने वाली है और मैंने जाना है फिर, तो भाई हम दो डेडिकेशन की जानिब जा रहे हैं। पहली डेडिकेशन हम कर रहे हैं जनाब कायनात अरसलान को, उनको डेडिकेट हो रहा है ट्रैक। और दूसरा ट्रैक जो है वो हम डेडिकेट कर रहे हैं जनाब हमारे अय्यूब आफरीदी भाई की जानिब से सवा गुल को, और उनकी जानिब से बाकी बाद में करेंगे। कहां गया गाना भाई, ये रहा। हां जी, तो पहला गाना जनाब कायनात अरसलान के लिए, और दूसरा गाना जो है अय्यूब लाला की जानिब से सबा गुल के लिए। एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे शशड़ मशड़ देव बो के कि पानी जो है वो ऊपर इधर उधर उछलता रहता है, इसका मैंने मतलब पूछा था। लाला मेरे को सही याद है या नहीं है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। खैर जी, हमने इनकी जो है डेडिकेशन चला दी है बेबी की, और बेबी की मैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो जाहिर है वो चली जाएंगी। और कह रही हैं, क्या कह रही हैं, बीबीसी हर वीकेंड पर हैव मोर आते हो आर मीनार, पता नहीं क्या लिख रही है, हैदराबाद में बीबीसी तो नजर नहीं आते, अल्लाह पता है क्या अरूसा कहाँ है। खैर अब आपके ये जो मैसेजेस है ना, इनके जवाब मैं वैसे कल बता चुका हूँ, हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे से लिसनर ऐसे हैं। देखिए आजकल संजू गायब हैं जी, और उनका आपको खैर पता नहीं होगा क्योंकि आपके जाने के बाद संजू आई थी। और जनाब हमारा अयूब लाला क्या कहता है, अयूब लाला कहते हैं वाह वाह अयूब लाला गाना कैसा लगा ये भी बताएं जरा आप जल्दी से। कहते हैं एक दर्द मुसलसल मुझे सोने नहीं देता, दिल सब्र का आदि है मुझे रोने नहीं देता, मैं उसका हूं ये राज तो वो जान चुका है, वो किसका है ये सवाल मुझे सोने नहीं देता। दोबारा पढ़ लिया, तुझे क्यों नहीं आता, तुझे तर्स क्यों नहीं आता यूं मेरे साथ बेरुखी करते हुए, तुझे तर्स क्यों नहीं आता मेरे साथ बेरुखी करते हुए, तेरा गिला खुदा से कैसे करूं, तुझे मांगा भी तो उसी से है। वाह वाह वाह वाह लाला आज फुल टाइम मूड में। लाला ये आपको गाना कैसा लगे, शुशड़ मशड़ दे वो के यानी के समझ रहे ना, इस हवाले से मेरे को बताओ लाला जरा। और माहिना कह रही है मेरे भतीजे की शादी थी उसमें काफी मसरूफियत रही, माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी महीना मिर्जा आमने तो खूब मुफ्ते तोड़े होंगे, यानी कि समझ रही है ना आप। अच्छा भाई अब एक मैसेज की जाने मैं पहले बढ़ रहा हूँ, वैसे तो दो मैसेज बड़े जबरदस्त थे, एक तो माहिर नफ्सियात वाला मुश्का, लेकिन उससे पहले जो मैंने मैसेज पढ़ना था वो कह रही है हैंडसम एक सोच बहुत देर से आई है, वाह वाह वाह वाह ये तो अच्छा हुआ कि 1947 में व्हाट्सएप नहीं था। जरा सोचिएगा, जरा बड़े गौर से पढ़िएगा, देखें एक जो है वो टीनेज जेंजी लड़की जो है वो ये मैसेज कर रही है। जेंजी से मुराद आप समझते हैं ना कि मतलब जो कि 18 साल 20 साल 24 साल तक के जो लड़के लड़कियां हैं उनके हवाले से, जरा सोचिएगा कि ये इस एज की लड़की ने लिखा है मैसेज मुश्क ने, और गौर फरमाइएगा जरा जरूर कि ये तो अच्छा हुआ कि 1947 में व्हाट्सएप नहीं था, वरना आजादी की जद्दोजहद के लिए कोई घर से नहीं निकलता। लोग कहते इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाएं, ऐसा हो सकता है, वो ऐसा हो सकता था। ये इतना खूबसूरत बेहतरीन और काबिले चमाट किस्म का ये उन लोगों के लिए मैसेज है, मतलब ये चमाटा है किस्म का। कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं ना जो तीर की तरह दिल में होते हैं, कुछ मैसेजेस भी ऐसे होते हैं कि जो कि ये मैं एक माशरे की बात कर रहा हूं कि माशरे के चेहरे पर एक चमाट होता है। जरा ये समझिएगा जरूर मैसेज को कि 1947 में अगर व्हाट्सएप होता तो ये फैक्ट है कि यही होता कि इस मैसेज को इतना फैला दो कि अंग्रेज जो है वो हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाए। हाय क्या मैसेज कर दिया है मोश्क तुमने, वाह। और आज हम जो इसका जवाब जो है, ऐसा हो सकता था नहीं हो सकता था ये मैं कहता हूं, उसकी वजह बेतहाशा मिसालें हमारे सामने हैं कि रमजानुल मुबारक की मिसाल दे देता हूं कि फ्रूट्स की कीमतें आसमान पर पहुंच जाती हैं, मतलब रमजानुल मुबारक से दो दिन पहले, ठीक है ना, सिर्फ दो दिन पहले आप केले खरीदने जाएं तो यार केले कैसे दर्जन है, 80 रुपए दर्जन है, और दो दिन के बाद वही केले जो है वो 80 की बजाय, ये नहीं कि 8 और 8 16, 160 के नहीं होते,
वो 250-300 रुपए दर्जन पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह खरबूजा हो गया, या जिस मौसम में रमजानुल मुबारक हो उस मौसम के जो फ्रूट्स होते हैं उनका हाल यही होता है। इसी तरीके से बेतहाशा चीजों का। अच्छा, ये मैं मिसाल इस वजह से दे रहा हूं कि आज से तकरीबन मेरे ख्याल 2-3 साल पहले की बात होगी कि ये एक सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए ये एक कंपेन निकली थी कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि जो है वो फ्रूट वाले खुद ब खुद कीमतें नीचे करेंगे। क्या जी? कि 3 दिन का बायकॉट करना है, फ्रूट्स नहीं खरीदने रमजानुल मुबारक के दरमियान। आप यकीन माने, बस मैसेज ही फॉरवर्ड हुआ है, अमल कोई भी नहीं हुआ, हर एक ने फ्रूट खरीदे। बस यही सिलसिला है। तो मुश्क हैंड्स, ये आपके लिए जो है ना सैल्यूट है। इतना जबरदस्त मैसेज आपने किया है कि यकीन माने कि मैं तो हिल गया भाई, मैं तो हिल गया, मतलब दिल जला है यार। आप वैसे ये मेरा अपना दिल नहीं जला है, ये बेसिकली एक सवाल है, हम सबके लिए सवाल है। हम अपने राइट्स के लिए उठते नहीं है। और एक ब्रेक की जानिब जाना है, 1 मिनट ऊपर हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम 1 मिनट बाद चले जाएंगे। मैं बात को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि बेसिकली ये हम अपने राइट्स के लिए ना आवाज नहीं उठाते। हम अपने तौर पर आवाज उठा रहे होते हैं मैसेजेस के थ्रू, लेकिन ये सिर्फ मैसेजेस फ्लोट करने से, मैसेजेस फैलाने से ये चीज नहीं होती। मैसेजेस ऐसे फैलाओ कि हम फलां जगह पर सब जमा होंगे और इस चीज को खत्म करने के खिलाफ एहतजाज करेंगे। तो कुव्वत इसी तरह बनती है कि जब सब मिलकर एक जगह पहुंचते हैं। कोई नहीं निकलता घर से, फैक्ट है, ये सही कह रही है, घर से कोई निकलता? तो आज के दौर देख लें, शुक्र करें कि 1947 में व्हाट्सएप वगैरह था नहीं, इसी वजह से ये अंग्रेज भाग गए, वरना अंग्रेज नहीं भागते और आज पाकिस्तान भी वजूद में नहीं आता। समझ रहे हैं आप? तो खैर, ये एक सवाल है हर पाकिस्तानी से, हर जो मेरा शो सुन रहे हैं, ये सवाल भी आपके पास अमानत है, आगे पहुंचाइए, ये बात को आगे पहुंचाइए, ऐसी बातें फॉरवर्ड कीजिए ताकि हमारा कम अज कम जमीर तो जागे। जाएंगे जनाब एक छोटी सी ब्रेक की जाने। FM 24/7 365 वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। भाई सलीम मेमन साहब सुन रहे हैं, भाईजान आप बेफिक्र रहे हैं, आपके तमाम मैसेजेस मैं पढ़ रहा हूं। उसका रीजन ये है कि जरा एक पब्लिक सर्विस मैसेज आप इसको कह सकते हैं, मुश्क के तवस्सुत से उनका जो मैसेज आया था तो मेरे जहन में जो सवाल आया उसको पढ़ने के बाद वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और मेरा मैं ये समझता हूं कि मेरा फर्ज बनता है कि कम से कम अगर कोई मैं सही बात करूं आप उसको सुनते हैं, और अगर गलत करूं तो नजरअंदाज कर दीजिएगा। और जनाब आगे बढ़ते हैं, इसका एक और मैसेज बड़ा जबरदस्त है मुश्क का, वो भी हम पढ़ेंगे। और जिगर गाना बहुत अच्छा था लाला, अभी एक और गाना चलेगा आपके लिए और आप उसके बारे में भी आपकी जानिब से डेडिकेट होगा, आप बेफिक्र हो जाए, यानी कि समझ रहे ना, ये मैं अपनी जानिब से आपकी तरफ से डेडिकेट करूंगा, अभी बस आप इंतजार करें जरा। अच्छा भाई, चालाक इंसान खेल तो जीत जाता है मगर भरोसा हमेशा के लिए खो देता है। नदीम भाई आपका क्या ख्याल है, वाह वाह वाह वाह वाह। नौरीन भैना इस तरह की बातें मुझे बड़ा मजा करती हैं। संजू इस तरह की बातें आज आप संजू की कमी पूरी कर रहे हैं और मुश्क ने भी कमी पूरी की है। वो उसके जो बातें हुए होती थी मुझे ऐसा लग रहा है उसने मैसेज किया संजू ने तो उस पर जो कुछ ना कुछ दिमाग में रख। चालाक इंसान खेल तो जाता है मगर भरोसा हमेशा के लिए खो देता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ये बात ही इतनी जबरदस्त है, मगर यानी कि समझ रही है ना, कुछ देर के बाद और जनाब जनाब जनाब
गाने की जानिब चलते हैं। आपको एक बड़ा जबरदस्त सा ट्रैक सुना रहा हूँ मैं। अरे अस्सलाम वालेकुम, हमारे शोभी भाई आ गए हैं। शोभी भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो जनाब एक ट्रैक की जानिब जा रहा हूँ। ये ट्रैक मैं अपनी जानिब से डेडिकेट कर रहा हूँ। किसको कर रहा हूँ पता नहीं मुझे, मैं किसको कर रहा हूँ। न्यू ट्रैक है, बड़ा जबरदस्त सा ट्रैक है और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। इसको गाया है जैन साहब ने और उनके साथ है हमजा मलिक। टाइटल है इसका अल्फाज, जरा सुनिएगा।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको, और उम्मीद करता हूँ कि ये गाना अच्छा लगा होगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जनाब, हमारे सलीम मेमन भाई ने हमें दावत दी। इन्होंने बोला भाई आपकी नदीम भाई आपकी भाभी है, झींगे की बिरयानी बनाई है बड़ी जबरदस्त, तो यानी कि समझ रहे ना आप, तो आ जाएं और आकर खा जाएं। सलीम भाई इस तरह थोड़ी होता है यार, बिरयानी जो है वो पकाने के बाद एक छोटी सी देगची में या हॉट पॉट में डाली जाती है, उसको बंद किया जाता है, उसके ऊपर कपड़ा बांधा जाता है, फिर उसको शॉपर में हैंग किया जाता है बाइक के ऊपर, और उसके बाद उसको FM 100 भेज दिया जाता है। तो यहां पर बैठकर हम वो खा सकते थे, और अगर आप नहीं आ सकते थे तो आजकल तो बाइकें भी किराए पर चल रही हैं, यानी कि समझ रहे ना, मत तरीके बहुत होते हैं मोहब्बत के यार। अयूब लाला भी भेज देते थे हमें ऐसे, और भी बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे से लिसनर जो यहाँ मिठाई भी भेजे थे यार। ये सिर्फ कहने की बातें हैं यार आपकी, है जी ते है जी। और कह रहे हमारा जिक्र, आपका जिक्र ही हो रहा है जनाब, एक गाने की फरमाइश भी इन्होंने की है सलीम मेमन भाई ने, हम जरूर उनकी फरमाइश को भी मद्देनजर रखेंगे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। जरीन नूर मेरी प्यारी सी मैंने कह रही है संजू का फोन बंद है बहुत दिन से, अल्लाह अकबर। ओहो हो हो, ये तो आपने जरीन बड़ी खतरनाक बात बता दी, कहीं वो हुंजा वगैरह तो नहीं चली गई घूमने, वहां पर गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो सिग्नल आते जाते रहते हैं। खैर आप जरूर पता कीजिएगा जरीनू, और हमें जरूर बताइएगा, शो में जरूर बताइएगा मेरी प्यारी सी बहन कि वो खैर आफियत से हैं, अल्लाह ताला उनको शादो आबाद रखे, हिफ्ज़ो अमान में रखे अपने, उनके लिए बहुत सारी दुआएं। तो आज गाना वाना नहीं डेडिकेट कर रही हैं आप रोए मन को, बताइए जरा हो जाए तो खुश, तो मुझे को बताओ तो गाना डेडिकेट कर देगा। अच्छा जी, थैंक्स हौसला बढ़ाने के लिए कह रही हैं मोश्क, अगर जिंदगी आपको जमीन पर गिरा दे तो वहीं सो जाओ। क्यों हैंडसम, बात तो सही है, वैसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी करती हो। कल से मैं छुट्टी पर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो भाई, ये तो गलत बात है यार। हमारी संजू भी

0: बात है यार, हमारी संजू भी गायब हुई हुई है और आप तुम भी जा रही हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सोच को क्या हो गया है। अच्छा भाई, हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ ने कहा था कि चालाक इंसान खेल तो जीत जाता है मगर भरोसा हमेशा के लिए खो देता है। नदीम भाई, आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? देखिए, भरोसा, चालाक इंसान अपनी चालाकी तो चला लेता है, आपको ये बात बताऊं, लेकिन वो बेसिकली चालाकी नहीं कर रहा होता, वो बेसिकली अपना नुकसान कर रहा होता है। वो कैसे कर रहा होता है? सबसे पहले चालाक इंसान अपने वक्ती फायदे के लिए जो है वो उस इंसान का भरोसा हमेशा के लिए खो देता है जो उसका बड़ा करीबी था, क्योंकि भरोसा हमेशा उस वही इंसान तोड़ता है जो बहुत करीबी हो, जो बहुत दिल के भी करीब हो और वैसे भी करीबी हो, ठीक है ना। एक तो ये नुकसान होता है उसको, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि इंसान जब सच्चा होता है ना, ये आपको मैं हकीकत लिखवा लें, मुझसे साइन ले लें, ठप्पा लगवा लें, इस बात की तस्दीक अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा कि जो सच्चा इंसान है ना, उसका जो सब्र होता है वो एक ना एक दिन सामने जरूर आता है। वक्त उसमें हो सकता है लगता है, और लगता भी है वक्त, ऐसा नहीं कि नहीं लगता, लेकिन उसकी जो सच्चाई है वो अल्लाह ताला दुनिया के सामने ले आता है। दुनिया के सामने से मुराद ये कि मिसाल के तौर पर खानदान में ये मसले मसाइल चल रहे हैं किसी इंसान के साथ, जो सच्चा इंसान है उसके ऊपर झूठ लग रहे हैं, इल्जामात लग रहे हैं, उसके भरोसे का चकनाचूर किया जा रहा है, या बहुत कुछ इस तरह का सिलसिला हो रहा है, और वो सब्र कर रहा है, अल्लाह पर यकीन के साथ खामोशी इख्तियार कर रहा है, तो एक ना एक वक्त ऐसा जरूर आता है कि जब खानदान वालों को ही पता चल जाता है, भाई ये तो यार बड़ा मासूम इंसान था, सारी चालाकी तो ये फला बंदे की थी, इसने सब अपने शातिरपने के साथ ये सब किया, तो अल्लाह ताला दिखाता जरूर है। कभी जल्दी दिखा देता है, कभी उसमें वक्त लगता है, क्योंकि वक्त मुकर्रर उस रब्बे ताला की जाते पाक ने किया हुआ है। तो ये मेरे ख्यालात हैं इस हवाले से, आप क्या कहेंगी? अच्छा जी, नौरीन का भी मैसेज आया, संजू भैना का फोन बंद आ रहा है, बहुत फिक्रमंद हूं नदीम भाई। अरे आप लोग मेरा दिल क्यों वो कर रहे हैं? मेरा दिल भी जोर से धक धक करने लगा है, ना करें इस तरह, अब ट्राई करते रहे और मैसेज करते रहे उसको, हैं जी ते हैं जी। तो खैर जी, इस हवाले से मैंने सारा कुछ बता दिया, हैं जी, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नए दोस्त समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन से आ गए हैं भाई, और अभी हम आपको लेकर चलते हैं गाने की जानिब। मेरी प्यारी सी शहजादी बहना जो है जरीन नूर, गो के इसने नहीं कहा, लेकिन फिर भी अब संजू अल्लाह ताला उसको जो है वो सलामत रखे, तो इसकी जरीन नूर की जानिब से हम संजू को एक गाना डेडिकेट करते हैं। ये भी गाना फर्स्ट टाइम आप सुनेंगे और उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत पसंद आएगा, और उसके बाद एक और गाना भी चलेगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
1: FM 100 टाइम चेक, इट्स 12 midnight।
0: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको, टाइम का पता चल गया आपको। तो जनाब, फर्स्ट ट्रैक जो है वो हम चला रहे हैं जरीन नूर की जानिब से, लेकिन अभी आप पहले ये जरा म्यूजिक सुने थोड़ा।

पर वो जो डेडिकेट करना चाह रहे हैं ना, वो ट्रैक जो है वो जावेद अख्तर साहब का ट्रैक है, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रैक है, और इसकी जो लिरिक्स हैं वो मुझे बड़ी पसंद है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों पसंद आएंगे। तो एलो फड़ो पहला

जी जनाब, असल में मैसेज चेक कर रहा था अयूब लाला का, तो जनाब फर्स्ट ट्रैक जो है वो तो चल रहा है बड़ा जबरदस्त सा, ये हम डेडिकेट कर रहे हैं जरीन नूर की जानिब से संजू को, और दूसरा ट्रैक जो है वो हमारे प्यारे से अयूब आफरीदी की जानिब से काफी दिनों के बाद जीबीएन को, निगत को और माहीन को डेडिकेट करना चाह रहे हैं। मगर

वाओ, वेलकम बैक। हर बार इस ट्रैक का नाम है और ये समर जाफरी और मुर्तजा कजलबाश ने गाया। और आजकल मैं ये चीज देख रहा हूं कि बेसिकली गानों में, जैसे ये हर बार आप थोड़ा सा सुनिएगा कि पंजाबी पार्ट्स भी आ रहे हैं साथ में, और शायद उनकी मिठास की वजह से ये आजकल के जो सिंगर्स हैं, एक उर्दू का गाना है, ब्यूटीफुल, इसकी शायरी भी बड़ी जबरदस्त है। और इसी गाने में अगर आप इसके आखिर में आए, वाह वाह क्या बात है, ये मिठास भरता है। इसी तरह मैंने आपको एक ट्रैक सुनवाया था यार, ये भी बड़ा जबरदस्त ट्रैक है, हमजा मलिक और जैन का। जैसे इससे पहले वाला जो ट्रैक सुना हमने वो समर जाफरी का था और उनके साथ मुर्तजा कजलबाश। अब ये सुने, हाँ हाँ।

उनकी तारीफ में कहूँ क्या, तेरा आहा। अच्छा इसी गाने में जो है वो जैन साहब का पंजाबी पार्ट भी आ गया, तो ये एक नया रंग भर देता। खैर जी ये मैं आपको बता रहा था कि आज के नए ट्रैक्स का कितना जबरदस्त इंतजाज होता है। तो अभी हम जिस ट्रैक की जानेब आपको लेकर जा रहे हैं, ये अयूब आफरीदी की जानेब से हम डेडिकेट करेंगे जी बी एन और माहिन को, और किसको, हाँ तीसरी भी है, जी बी एन को, माहिन को और निगहत को, एलो फड़ो जनाब। और ये मेरा बड़ा फेवरेट है, हाय हाय हाय, ये गीत है, गजल नुमा गीत है, जावेद अख्तर साहब की आवाज और मेरे वालिद मोहतरम, इसकी शायरी भी कमाल की है।

जुल्फ मत खोलिए, मुंह से मत बोलिए, क्या बात है भाई, क्या बात है। मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रैक है ये, और उम्मीद करता हूं आप सबको भी बड़ा पसंद आया होगा। गो के नए ट्रैक्स के मिजाज से हटकर, मगर क्योंकि मेरे दिल के बहुत पास है इसलिए लारा की फरमाइश का हमने पूरा किया और उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट भी किया है और कहा बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा उनको, वाह भाई वाह, थैंक यू वेरी मच। और क्या कहने, इनकी तारीफ करूं, हाय हाय। और इस सॉन्ग से दिल की हालत अजीब होती है, ये फैक्ट है यार, ये फैक्ट है। मैं वाकई में ये सॉन्ग जब मैं सुनता हूं ना तो इसकी शायरी जबरदस्त है और दिल अजीब कैफियत में चला जाता है। और आपकी पसंद जबरदस्त है, मेरी पसंद भी यही है। हाय अल्लाह जी, जुल्फ मत खोलिए, हाय अल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच मोश। और कह रही है, हाय मैं कदे में फरिश्ता बहकता हुआ, भरपूर रोमांटिक सॉन्ग, मीठी कसक लिए हुए गुनगुना कर हसरत पूरी कर दी, मुझे भी ये सॉन्ग डेडिकेट करें। हैंडसम, बिल्कुल करेंगे आपको, आपको हम ये ट्रैक डेडिकेट करेंगे जुमेरात वाले दिन, फक्का फक्का है जी, फक्का फक्का। और जना फरीदा बुरहानुद्दीन कह रही है, भैया जी फोन चलाओ, नहीं हुआ 14 अगस्त को फोन चलाओ होना था, बस नहीं हुआ तो अब क्या कर सकते हैं, यानी कि समझ रही है ना, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। फरीदा बुरहानुद्दीन ने जो मुझे आंसर दिया है वो हम जरूर चलाएंगे। जरीन नूर कह रही है, थैंक सॉन्ग के लिए आपको याद रहता है, मेरी प्यारी सी बहना आप भी मुझे हमेशा याद रहती हैं, आप मेरी क्योंकि वाहिद शहजादी बहना है, यानी कि समझ रही है ना, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बहुत खूबसूरत सॉन्ग आपके बाबूजी का, बहुत खूब सूरत गाया, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैंने भी नाल नाल गुनगुनाया थोड़ा सा मैं तो बाहर, मतलब ये जब चल रहा था, मैं जब भी ये ट्रैक चलता है तो मैं, आप यकीन मानिए कि मैं साथ साथ गुनगुना रहा होता हूँ। आए हाय स्वीट सोनियों को, मासूम से गरीब से बच्चे का सलाम कबूलो, वालेकुम अस्सलाम, भाई कैसे हो, इरफान मेमन कहाँ गायब हो भाई, शादी वादी तो नहीं कर ली है, बात बात तो नहीं पक्की हो गई है, इतने दिनों के बाद तुम्हारा मैसेज आया सामने। और उसके साथ ही साथ भाई समी साहब कहाँ गायब है, समी कहाँ हो शहजादे तुम, मेरी सिस्टर उरूसा हॉस्पिटल में, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, तुम्हारी सिस्टर नहीं है भाई, वो सिर्फ, वो मेरी भी सिस्टर है, मेरी भी प्यारी सी बहना है। और अरूसा मेमन को क्या हुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और आप सब से गुजारिश है भाई कि ओके ये हमारी प्यारी सी बहन जो है वो अगर हॉस्पिटल में है तो आप सब दुआ कीजिए, पता नहीं किसकी दुआ लग जाए यार, ये जरूर किया करें, जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ना तो उसकी वजह यही है कि पता नहीं किसकी दुआ लग जाए, ठीक है ना, अल्लाह ताला किसकी सुन ले, किसकी कबूलियत का की घड़ी हो, तो आप सब दुआ जरूर करें अरूसा के लिए, अरूसा मेमन के लिए, कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। इरफान मेमन हम साथ हैं तुम्हारे, ठीक है ना, बिल्कुल फिक्र नहीं करना, इंशाल्लाह मेरी प्यारी सी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरी कजन्स का मैसेज किया था, हाँ यार वो थोड़ा सा 3636 का सिलसिला आगे पीछे हुआ है, इंटरनेट का मसला आपको पता ही है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो गैस हो, बिजली हो, टेलीफोन हो, इंटरनेट हो, वो अपनी मर्जी से चलते हैं, तो बस इस तरह के हमारे साथ भी कुछ अताप का शिकार है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो ये तमाम सिलसिले सही हो जाएंगे। अपनी तमाम कजन्स को मेरी जानिब से कहना कि वो सब भी दुआ करें और हमारे तमाम लिसनर्स भी दुआ करें मेरी प्यारी सी बहन अरूसा मेमन के लिए, कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। जुल्फ मत खोलिए, पर आपकी रूह मन याद आ गई, आए वो तो है, ये सॉन्ग बहुत पसंद है मुझे से भी ज्यादा, हाँ ये भी मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, आप नहीं जानती, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं अपने तमाम मेरे जितने भी प्यारे प्यारे से लिसनर्स हैं, मैं किसी हद तक, मैं ये दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन किसी हद तक तकरीबन सबके मिजाज को थोड़ा बहुत जानता हूँ कि मिजाज कैसे हैं, क्योंकि मैं किसी की भी बात पर, चाहे वो तनकीद हो या तारीफ हो,
तो मैं उसको सामने वाले की सोच को मद्देनजर रखते हुए पढ़ता हूं। इसी वजह से आप लोगों को अच्छा भी लगता है, क्योंकि हमेशा कोशिश ये किया करें कि जिंदगी में अगर अपने जुबान से कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो जुबान से कामयाबी इंसान को उसी वक्त मिलती है जब जुबान में मिठास हो, कड़वाहट जो है वो कम हो, और बहुत सारी कड़वी बातें जो है ना वो जहर से भी ज्यादा जहरीली होती हैं। और जरूरी नहीं है कि आपकी नजर में या आपकी सोच के मुताबिक जो बात मीठी है वो सामने वाले के लिए भी मीठी हो, वो सामने वाले के लिए कड़वी भी हो सकती है। ये बात बड़ी काबिले फिक्र काबिले गौर है कि अक्सर ऐसा होता है कि इंसान की नीयत खराब नहीं होती और वो अपने हिसाब से मीठी बात कर रहा होता है, लेकिन सामने वाले के लिए वो बात जो है वो जहर से ज्यादा भी कड़वी साबित होती है। तो लिहाजा कोशिश ये किया करें कि अगर आप ये कहते हैं कि भाई जुबान से जो है किसी का दिल जो है वो जीतें, तो उसका ये है कि सामने वाले की जो मिजाज है उसको समझिए और कोशिश ये कीजिए कि जब भी उससे गुफ्तगु हो तो उससे उसके मिजाज के मुताबिक अगर आप बात करेंगे या उसको समझाने की कोशिश करेंगे या उसकी बात को उसके मिजाज के मुताबिक समझते हुए समझेंगे तो यकीन मानिए कि मिठास ही मिठास आपको हर तरफ नजर आएगी। यानी कि समझ रहे हैं ना आप। नौरीन बहना क्या कह रही हैं? कह रही हैं अरूसा बहन को अल्लाह ताला सेहतयाबी वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन सुबह आमीन। नदीम भाई मेरी भी सिस्टर रुबीना अजहर के लिए दुआ कीजिए, 10 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको देखने लाहौर गई थी, प्लीज जरूर दुआ कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल करेंगे कि रुबीना अजहर जो है उनके लिए भी आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जितने आप यकीन मानिए कि ये मुझे कहना तो नहीं चाहिए मगर मैं ये तो नहीं कहता हूं कि मैं 5 वक्त का नमाजी हूं, लेकिन जितनी भी नमाज पढ़ता हूं उसमें FM 100 के तमाम बीमारान के लिए मैं खुसूसी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हर एक को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आप इनके लिए भी जरूर दुआ कीजिएगा। भाई हमारा जानू आ गया, जानू बर्गर। अरे भाई जानू कैसा है? जानू भाई जो है अभी इत्तफाक ऐसा है कि जानू बर्गर से जाकर मैं शो में आने से पहले तो मैं जानू के पास गया था, मैंने बोला भाई एक अंडे वाला बर्गर बना दो, हमारी साहबजादी ने खाना था। तो जानू साहब जो है वो सबको सलाम कह रहे थे। जानू भाई आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, गाना चलने दें, फिर आपसे बात भी कर लेंगे। मुझे फोन कर रहे हैं जानू भाई। जानू भाई अभी फोन मत करो, मैं खुद फोन करता हूँ आपको। तो वे ये बता रहा था कि वो तमाम सुनने वालों को सलाम भी कह रहे थे और मैंने कह दिया भाई। शोभी भाई और गुफरान भाई ने आपका बर्गर खाया था और बड़ी तारीफें कर रहे थे। तो खैर ये जानू भाई भी साथ ही आ गए। दुआ रुबीना अजहर के लिए जरूर कीजिएगा, वो बात बीच में ही रह गई। तो वो 10 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, तो दुआ करने में यकीन माने कोई पैसे वैसे नहीं लगेंगे, लेकिन आपको क्या पता कि आप जब दुआ कर रहे हैं तो वो घड़ी जो है अल्लाह ताला की नजर में कबूलियत की नजर कबूलियत वाली हो, आपकी दुआ जो है वो कबूल हो जाए। तो लिहाजा दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो है इन दोनों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। चले इसी बात पर अब हम आपको एक ट्रैक की जानिब लेकर जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। एलो फड़ो।

वेलकम बैक। जा रही हूं मैं फासले ट्रैक और जाफर जैदी और क्यूबी की आवाज में। बहुत पॉपुलर हुआ था भाई ये ट्रैक, बहुत पॉपुलर हुआ था और उम्मीद करता हूं बहुत सारे लोगों को पसंद आया होगा। अभी जो है आप लोगों की फरमाइशें और भी हैं हमारे प्यारे से जो है सलीम मेमन ने जो है एक ट्रैक कहा है कि भाई ये हमारे लाला को भी डेडिकेट कर देंगे और इनामुल हक को भी डेडिकेट कर दें, तो बिल्कुल कर देंगे। तो हमारे गुल साहब आ गए, गुल तेरा रंग चुरा लाए गुलजारों से इस्लामाबाद से ठंडी ठंडी हवाओं के साथ और कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम, वेलकम, सलामत रहें हमेशा, आप भी सलामत रहें हमेशा ता कयामत रहें। और एक बहुत ही जबरदस्त सा इनका एक पुराना शेर है, वो आप लोगों की समातों की नजर कर रहा हूं। कहते हैं कि मंजिल की जुस्तजू में कहां आ गया हूं मैं, मंजिल की जुस्तजू में कहां आ गया हूं मैं, यूं लग रहा है राह से भटका हुआ हूं मैं। वाह वाह वाह वाह, ओए होए होए होए होए, क्या बात है भाई। मंजिल की जुस्तजू में कहां आ गया हूं मैं, यूं लग रहा है राह से भटका हुआ हूं मैं। इंसान अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेता है जुस्तजू में, जद्दोजहद में, और जब जिंदगी के वो तमाम साल जो भरपूर जवानी के होते हैं गुजारने के बाद जिस मकाम पर खड़ा होता है, वहां पर ये सोचता जरूर है कि यार काश मैं वो कर लेता तो आज कहीं और होता, काश मैं ये कर लेता तो वहां होता, काश मैं वो कर लेता तो मैं शायद मुल्क से भी बाहर होता, काश मैं ये कर लेता तो शायद ये होता, लेकिन आज कहां हूं मैं, हाय हाय हाय हाय, भटका हुआ हूं मैं, हाय हाय हाय हाय, मंजिल की जस्तजू में कहां आ गया हूं मैं, यूं लग रहा है राह से भटका हुआ हूं मैं। बहुत खूब भाई, बहुत खूब, मजा आया मजा आया। अच्छा जनाब, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है और आप लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों का प्यार जो है उमंड उमंड कर मैसेजेस के थ्रू मेरे सामने आ रहा है, और यकीन की जरूरत क्यों पड़ती है इंसान को, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। हां जी, यकीन की जरूरत इंसान को क्यों पड़ती है, जरा जहन में रखिएगा। बड़ी जबरदस्त इनके शेर से भी मुझे एक बात याद आ गई है, तो मेरे जहन से ना निकल जाए, तो लिहाजा आप लोग मुझे याद दिलाइएगा कि ये मैंने एक लफ्ज बोला है, खसूसी तौर पर नौरीन बहना, ये आपने मुझे याद दिलाना है, यकीन की जरूरत इंसान को क्यों पड़ती है। तो ये इतना बस जुमला मुझे बोलिएगा तो मेरे दिमाग में तमाम चीजें आ जाएंगी। तो जनाब, मैसेजेस आपके आ रहे हैं, मोहब्बत भरे, प्यार भरे, चाहत भरे, और हमारे प्यारे से जो है जानू बर्गर वाले जो है वो सुन रहे हैं, और उनके साथ साथ जो है एक और जिंगर बर्गर वाला भी सुन रहा है, नाम नहीं बता रहा था भाई तो भाई एक ट्रैक हमने डेडिकेट करना है, तो और सलीम मेमन भाई आप वाला ट्रैक भी डेडिकेट करेंगे, डोंट वरी डोंट वरी, लेकिन पहले मैं जरा इसको गाना डेडिकेट कर दूं यार, वहां पर बर्गर जरा सस्ता मिल जाएगा, समझा करो, 10-20 रुपए 50 रुपए कम में दे देगा खैर अभी जो है ना थोड़ा सा म्यूजिक सुनिए।

वेलकम बैक गैंग, सुनियो तो जनाब, अभी हमें एक बहुत प्यारे से ट्रैक की जाने जा रहे हैं, क्योंकि फरमाइश ये आई थी कि राहत फतेह अली साहब की आवाज होनी चाहिए, तो राहत फतेह अली साहब की आवाज आपको सुना रहे हैं। अब राहत फतेह अली का एक से बढ़कर एक ट्रैक है, तो उन्होंने कहा कोई भी चला दें। तो मेरे सामने तीन चार ट्रैक थे, तो उन ट्रैक्स में गो के सब ट्रैक्स जो है एक से बढ़कर एक है, लेकिन अभी जो है हम आपको क्योंकि गाने भी कुछ ऐसे चल रहे थे ना कि तुम चलाया मैंने, जुल्फ मत खोलिए चलाया, अल्फाज चलाया, हर बार चलाया, तो हर एक में दिल की बात है, ठीक है ना, बेचैनी की बात है, मोहब्बत की बात है, तो कुछ राहत साहब का भी ऐसा ही हो जाए तो क्या बात है। तो जनाब, ये बहुत ही प्यारा सा ट्रैक जानू बर्गर वाले की जानिब से, हमारे उनके बराबर में पड़ोसी हैं जिंगर बर्गर वाले, उनको डेडिकेट कर रहे हैं। एलो फड़ो

वेलकम बैक कहेंगे सानू एक पल चैन ना आवे। सजना तेरे बिना क्या बात है भाई, क्या बात है। ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप यू लाइक इट। हमारी प्यारी सी बहन फरीदा मुरादीन कह रही है अल्लाह ताला रूसा मेमन को जल्द से शिफायाब करे, आमीन, और आसानियां पैदा करे, आमीन। भाई हमारी एक और भी प्यारी सी बहन के बारे में जो है वो जिक्र हुआ है, उनका भी नाम लीजिए, रुबीना अजहर जो है, उनके लिए भी ढेरों दुआ करनी है फरीदा बुरानुद्दीन नाम ने, यानी कि समझ रही है ना। मेरा ख्याल है गुल साहब ने हमारी जानिब से जो है ना पजीराई जो है सुनी नहीं है, अगर सुनी होती तो उनका मैसेज आ जाता कि नदीम भाई वाह वाह क्या बात है भाई, क्या बात है, मंजिल की जस्तजू में कहां आ गया हूं मैं, यूं लग रहा है राह से भटका हुआ हूं मैं। और अब जो है जनाब, मैंने आप लोगों को फौरन से पेश किया, वक्त फिर बीच में नहीं मिलता, थोड़ी सी तफसील बताना भी चाहता हूं मैं, लेकिन ये होता है कि सवाल का जवाब जो है वो आगे से निकल जाता है। पहले मैं मैसेज का जवाब सवाल आपको बता दूं कि मैंने रोशनी की रफ्तार आपसे पूछी थी कि वो कितनी है, तो इस हवाले से फरीदा बुरहानुद्दीन का जवाब आया और मेरी नौरीन तौसीफ बहना का भी आया, दुरुस्त जवाब आया सबके। वो कहती हैं कि रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। अब आप सोचें 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये जितनी देर में मैंने पढ़ा है ना, तो समझ लीजिए कि तकरीबन 10 लाख के करीब जो है वो रोशनी सफर कर चुकी होती है। तो फिजिक्स के मुताबिक इसकी एग्जैक्ट जो स्पीड है वो 2,99,792.458 मीटर पर सेकंड है, जिसे सी से जाहिर किया जाता है, यानी कायनात की सबसे तेज तरीन रफ्तार है ये। और अलग अलग पैमानों में यानी कि यूनिट्स में रोशनी की रफ्तार जो है वो नीचे दर्जे की है, रफ्तार के मुख्तलिफ पैरामीटर्स, पैरा किलोमीटर्स, पैरा सेकंड्स हैं, वो तकरीबन जो है वो अप्रोक्सीमेटली आप समझ लीजिए कि 3 लाख जो है वो किलोमीटर या पर माइल सेकंड है, पर सेकंड है 3 किलोमीटर पर सेकंड है, और तकरीबन 186 माइल, मतलब मीलों के हिसाब से अगर आप देखें तो वो 186,000 मील पर सेकंड है। और इस हवाले से तकरीबन 1.8 बिलियन यानी कि तकरीबन इसको अगर उर्दू में कहूं तो 1 अरब किलोमीटर जो है वो है चांद। और दिलचस्प हकीकत ये है कि जमीन के चक्कर जो हैं रोशनी के सफर के 1 सेकंड में जमीन के गिर्द जो है वो 7.5 चक्कर वो जो सूरज के गिर्द लगाती है ना वो लगा सकती है, अगर रोशनी की रफ्तार जो है वो हो तो। खैर इसकी और भी बहुत लंबी चौड़ी तफसील है, और दिन और रात के हवाले से जो मैंने बात की थी वो मैं किसी शो में जरूर आपको बताऊंगा, बड़ी जबरदस्त सी बातें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन तौसीफ और फरीदा बुरहानुद्दीन। और फरीदा बुरहानुद्दीन कह रही हैं अल्लाह ताला रुबीना अजहर को भी सेहत और शिफायाब अता फरमाए और उनके लिए भी अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे, आमीन। अच्छा जनाब ये तो सिलसिलेकार ऐसे ही हैं। और हाय मुश्क, थैंक यू वेरी मच, मुश्क ने मुझे याद दिला दिया यकीन की जरूरत क्यों है, तो मुश्क ये हम अभी बताएंगे, अभी तो हमने सवाल का जवाब दिया है, लेकिन अभी हम बत्तियों की बात कर रहे हैं, रोशनी की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना आपको एक ऐसा गाना सुनाऊं कि जिसमें लाइट जल रही है, रोशनी जल रही है, बत्तियां जल रही हैं। तो हमारे सलीम मेमन की जानिब से ये ट्रैक हम डेडिकेट करें इनामुल हक को और हमारे प्यारे से लाला को। आप दोनों के लिए कहां गया गाना, या गाने जज हो गया, यही रहा जनाब, एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो बालो बतिया भाई, बतियों की बात हो रही थी, रोशनी की बात हो रही थी, तो ये सलीम अहमद साहब ने भी बत्ती जला दी है और कह रहे हैं मैंने भाई जाना चाह रहा हूँ जानू बर्गर वाले के पास, और उसको बोले मुझे भी राइट कर दे रियायत, बिल्कुल कर देगा जानू, ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए या 5 रुपए कम करना, इससे ज्यादा नहीं करना, मुझे भी इतने ही करके देता, कम 5 रुपए से ज्यादा कम नहीं करता। खैर जी, और उम्मीद करता हूं कि तकरीबन मेरे ख्याल है जितनी भी फरमाइशें आई थी वो मैंने शाड़ी की शाड़ी तकरीबन पूरी कर दी है, तो लेकिन अभी 2 गाने मैंने चलाने हैं, वहीं चलाने अपनी पसंद का कोई चलाऊं, हाँ चलाएंगे चले। तो जनाब अब मेरी प्यारी जी बहन नौरीन तौसीफ ने भी मुझे याद दिला दी है यकीन की जरूरत क्यों है, और इसी तरह मुश्क ने भी याद दिलाया कि यकीन की जरूरत इंसान को क्यों पड़ती है, सोचने वाली बात है ना। हम कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब हकीकत यह है कि जिंदगी में हर रिश्ते में हम इस चीज के तलबगार होते हैं कि हमें यकीन आ जाए, यकीन आ जाए। लेकिन जहां पर मोहब्बत और खूनी रिश्ते एतबार होते हैं वहां पर जो है ना यकीन की जरूरत नहीं पेश आती। और जहां तक मैं ये समझता हूं, ये मैं अपनी सोच बता रहा हूं आपको, अपनी अकल नाकिस अकल से मैं ऐसी बातें आपसे कर रहा हूं, क्योंकि जो तजजिया होता है वो जिंदगी के तजर्बात से होता है, और जिंदगी का तजर्बा सिर्फ यही नहीं होता कि जो आपके साथ गुजरा हो, जिंदगी के तजर्बात में वो तजर्बे भी शामिल होते हैं जो आप अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। किसी दोस्त को उसके भाई जो है उसने अपने भाई को घर से निकाल दिया, या उसकी जिंदगी खराब कर दी, या उस भाई को जो है वो बेदखल कर दिया, किसी बाप ने बेदखल कर दिया, किसी ने अपने भाई को सर पर बिठाया हुआ है, किसी ने अपने भाई के साथ कुछ किया, तो ये मतलब मुख्तलिफ किस्म की जो चीजें हैं, मियां बीवी के झगड़े आपको नजर आ रहे होंगे, किसी की बीवी आपको गलत नजर आएगी कि वो अपने शौहर के साथ ज्यादती कर रही है, तो किसी का शौहर आपको गलत नजर आ रहा होता है कि वो अपनी बीवी के साथ जो है वो ज्यादती करता है। ये इसी तरीके से आपको जो है वो अपने दोस्त अहबाब में भी ये चीजें, ये जो चीजें हमें देख रहे होते हैं ये हमारा तजजिया जो बनता है वो तजर्बे की बुनियाद पर जो बनता है, जो तजर्बा होता है वो सिर्फ अपनी जिंदगी के हवाले से नहीं होता, हम तजर्बात जो है वो हमारे गिर्दो निवाह में जो कुछ हो रहा होता है उसको देखकर भी हम अपने तजर्बे को तजर्बे में इजाफा कर रहे होते हैं। कि जैसे हम सुनते हैं ना कि यार दुनिया देखी है भाई, इसने दुनिया देखी है, दुनिया कैसे देख ली जी, वो भाई 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, 90 साल का हो गया एक इंसान, तो उसने अपनी जिंदगी जितनी गुजारी है तो उसकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे हालात और वाकयात गुजरे हैं जो कि सिर्फ उसके साथ नहीं और वैसे भी जिंदगी में उसने देखे हैं अपनी आंखों से, कि जिसकी वजह से उसको तजर्बा ये होता है कि एक शख्स जो है जिसकी शादी को 10 साल गुजर गए, 10 साल उसने बड़े अच्छे गुजारे और 11वें साल में खुदा ना खास्ता किसी को तलाक हो गई, ठीक है ना। अब उसके सामने, उस इंसान के सामने वो पूरे 11 साल है उसके, वो 11 साल का जो अंजाम था वो उसके सामने है कि भाई ये तमाम चीजें चलती चलती चलती चलती 11वें साल में आकर ये वजह हुई और तलाक हो गई, ठीक है ना। तो अब वो 11 साल का तजर्बा उस इंसान को हो गया जिसने ये तमाम हालात देखे, तो जिसके जितनी उम्र होती है वो उसी हिसाब से ये तमाम चीजों को देख रहा होता है। तो जहां तक यकीन की बात आ जाती है तो मैं इसके बहुत सारे पहलू हैं, समझ रहे ना, इंसान धोखा यकीन की वजह से ही खाता है जब वो हर इंसान पर यकीन कर लेता है, मतलब हर ऐरे गैरे पर जो यकीन कर लेता है ना। अच्छा, इनसिक्योर वो इंसान होता है जो ज्यादा लोगों पर यकीन कर लेता है। इंसान को अपने तजर्बे, ये तजर्बे की जो मैंने इतनी लंबी दास्तान सुनाई है उसको सुनाने का मकसद ही यही है कि भाई अपने तजर्बों से भी इंसान को सीखना चाहिए। एक दफा चोट खा ली है तो दूसरी दफा चोट, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ये भी है, लेकिन ऐसे लोगों को कसूरवार भी नहीं आप ठहरा सकते जो किसी पर यकीन ही नहीं करते, एतबार ही नहीं करते, ठीक है ना। ऐसे लोगों की भी एक तजर्बा होता है, वो तजर्बा ही होता है, उन्होंने धोखे इतने खाए होते हैं कि वो एक सच्चे और अच्छे इंसान पर भी यकीन नहीं कर पाते, लेकिन उसमें उनको टाइम लगता है।
تو خیر یہ بھی ایک بہت لمبا ٹاپک ہے اور اس پر بھی اگر گفتگو کی جائے یا سمجھایا جائے تو بہت ٹائم لگ جائے گا بھائی، اور میں دو گانے نہیں چلا سکوں گا، ہیں بھائی؟ یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو ابھی آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک بہت ہی پیارے سے ٹریک کی جانب، اور فیصلہ آباد سے میری پیاری سی بہنا نورین سن رہی ہیں، تو نورین نے مجھے اس گانے کی ایک دفعہ فرمائش کی تھی تو لہٰذا مجھے یاد ہے، تو یہ ہم اپنی پیاری سی بہن نورین کو ڈیڈیکیٹ کریں گے. ایلو پھڑو.

वेलकम बैक कहेंगे जनाब, ब्यूटीफुल ट्रैक और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और अब आपसे साइन आउट करने का वक्त हो चुका है, लेकिन ये मजा जारी और सारी रहेगा क्योंकि हमारे द ग्रेट अजमल शोभी साहब अभी मेरे बाद शो करेंगे और चार नहीं, आठ नहीं, सैकड़ों जो है वो चांद यहाँ पर लगाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आप सबकी समाधों की नजर। अल्लाह हाफिज़।

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Jovi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: बनी की आवाज आप सुन रहे थे और यकीनन एक खूबसूरत ट्रैक बनी की आवाज का, और बनी का अंदाज अपना ही अंदाज है। तमाम सिंगर से मुकाबले में देखें तो बनी का अंदाज आपको अलग ही लगेगा। आवाज अंदाज और खूबसूरत मीठी मीठी सी आवाज, यकीनन ये अलग अलग सी है। और वक्त जनाब 1:27 हो चुके हैं। आप सबको मैं खुशामदीद कहूंगा एफएम रेडियो पाकिस्तान को। यकीनन आप सब मौजूद हैं, प्रोग्राम आप रेडियो पर तो सुन रहे हैं एफएम रेडियो पाकिस्तान के। इसके साथ साथ प्रोग्राम की लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग जो है वो यूट्यूब पर मौजूद है, और यूट्यूब पर आप जाएंगे तो फेसबुक पर इसका लिंक मौजूद है, और अगर फेसबुक पर आप मौजूद नहीं है तो आपको यकीनन यूट्यूब पर सर्च करना होगा MAKS MAX HD TV। एक साथ लिखेंगे, सर्च करेंगे तो यकीनन ये प्रोग्राम की वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो आप अपने कमेंट्स के जरिए यकीनन हमारा साथ दे सकते हैं, और हम आपको खुशामदीद कहेंगे MAKS HD TV पर और उसके साथ साथ एफएम रेडियो पाकिस्तान के कराची स्टेशन पर। और अब यूं करते हैं कि आवाज हम कुछ क्लासिकल आवाजें इस वक्त हम शामिल कर रहे हैं, और लेजेंडरी वॉइसेज हम इस वक्त शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में। तो इन्हीं में से एक आवाज अब और माजी की खूबसूरत आवाज वो है आलमगीर साहब की।

जनाब वही तो मेरा दिल ले गई, और जो दिल ले गई तो वो ले गई, अब दिल वो पलट के मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो पता नहीं भारत, और किस तरह मिलेगा कैसे मिलेगा ये भी अलग बात है। अब रखने वाला कैसे रखता है, वो कहते ना कि दिल तुम्हें दिया था रखने को, तुमने दिल को जला के रख दिया, तो बिल्कुल वही। और खूबसूरत सी आवाज ये किरण जो है वो एमरुशी की आवाज में गाना भी बड़ा खूबसूरत है, वो मैं सुनाऊंगा आपको। और वक्त जो 1:40 हो चुके हैं, उमा जी ने हमें उमा में ज्वाइन कर चुके हैं, और थैंक यू उमा हमारे साथ मौजूद उमा, और उसके साथ साथ समीर ब्रोज भी हमें सुन रही हैं, और उसके साथ साथ जनाब और बहुत सारे दोस्त हमें सुन रहे हैं। थोड़ा सा मसला होगा, हाँ जी, जरा सर कुछ आपके कमेंट्स को जरा शामिल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी मुझे, क्योंकि थोड़ा सा सिस्टम में आज गड़बड़ है यहाँ पर, और इसलिए जो है वो कमेंट्स जो है वो यूट्यूब के कमेंट्स वो मेरे सामने बिल्कुल इस वक्त आ नहीं रहे, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, मगर देखते बारे कोई ना कोई जुगाड़ देखते हैं किसी तरह। और अब हम यूं करते हैं कि शामिल करते हैं एक और खूबसूरत ट्रैक, और ये यकीनन आपको पसंद आएगा, सुनिएगा जरा कैसा लगता है आपको, फिर आप ही बताएंगे कि ये ट्रैक कैसा लगा आपको।

A porque estaban tus haciendo en Canadá. मौसम के लिहाज से वैसे ट्रैक अच्छा ही था ना, क्या ख्याल आपको? ये बहुत तभी लड़से के बाद मैंने गाना प्ले किया, बहुत तभी लड़से के बाद। और जनाब वक्त 1:52 हुए नहीं, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। अगर यूट्यूब पर आप मेरे साथ मौजूद है तो आप लेकिन मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक फेसबुक पर मौजूद है। उसके साथ साथ अभी एक मैं थोड़ी सी मूड को थोड़ा सा चेंज करेंगे और फिलहाल जो एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं वसीम साहब ने हमें जो है वो एक मैसेज हमें भेजा है और कहते हैं कि अब्दुल कादिर साहब के वालिद मोहम्मद सुल्तान साहब बहुत बीमार हैं, तो उनके लिए कुछ दुआ करते हैं जरूर। आप सब भी हमारे साथ दुआ कीजिएगा जरूर। और यकीन कहते हैं कि जब हम सब आमीन कहते हैं तो अल्लाह को पता नहीं किसका आमीन पसंद आ जाए, क्या पता अल्लाह को कौन सा अल्लाह का प्यारा बंदा जिसके मुंह से आमीन निकले और अल्लाह ताला उसकी ये दुआ कबूल कर ले। तो आप जरूर, आप सब इल्तिजा के जरूर आमीन कहिएगा, क्योंकि अब्दुल कादिर साहब के वालिद मोहम्मद सुल्तान साहब बहुत बीमार हैं और बाप तो बाप है, तो फिर अल्लाह ताला इनका साया जो है सलामत रखे। तो सुल्तान साहब के लिए बहुत सारी दुआएं हमारी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, दराज उम्र के लिए बहुत सारी दुआएं, और जल्द से जल्द अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाब करे और अपना खैरियत से वो अपने घर आए, क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट भी हैं वो। तो अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं हमारी, आप सब भी जरूर दुआ कीजिएगा और अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। और वसीम साहब आपको बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, ऐसी नेक कामों में आप हमें याद रखते हैं और अच्छी बात है, इस बहाने हम भी इस नेक काम में शामिल हो जाते हैं, हमारे साथ तमाम लोग भी हम शामिल हो जाते हैं। यकीनन दुआ करना, किसी लिए दुआ करना, ये भी एक सदका जारी है, आज हम करेंगे कल हमारे लिए कोई करेगा। तो बस आप सबसे इल्तिजा है, दरखास्त है, जरूर दुआ कीजिएगा। अब्दुल कादिर साहब के वाले सुल्तान साहब के लिए बहुत बीमार हैं, उनके साथ साथ उन तमाम लोगों के लिए दुआ करें जो बीमार हैं, घरों में, हॉस्पिटल में, कहीं भी हैं, किसी भी जगह हैं, सबके लिए बहुत सारी दुआ करें। और उनके साथ साथ मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा, वो भी कुछ बीमार हैं, और उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो जरूर आप सबसे दरख्वास्त है कि इन दुआओं के साथ साथ जरूर मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला पता नहीं किसके मुंह से आमीन निकलेगा और अल्लाह ताला छट से वो दुआ कबूल कर ले, तो कोई तो यकीन अल्लाह का नेक बंदा होगा। चले जरूर इंशाल्लाह ताला बस आप सब खुश रहें, सलामत रहें, और अल्लाह ताला आप सबको जज़ा खैर दे। बस इसी तरह दुआओं में याद रखें, दूसरे के लिए भला चाहें, दूसरे की भलाई चाहें, तो अल्लाह ताला हम सबको भला करेगा। और आते हैं एक बार फिर अपने प्रोग्राम की जानिब, और अब हम शामिल करेंगे एक और खूबसूरत सा नगमा, और ये नगमा जो है वो मैं शामिल करने लगा हूँ, आवाज़ है वारिस बेग की।

हो गया है तुमसे प्यार, न लूटो मेरे मन का करार। सिंह की आवाज थी और 2000 मैं 2000 का ये सन 2000 में इनका एल्बम आया था, कैसेट का दौर था, आया था उसमें बड़ा हिट हुई। और सिंह की अपनी एक रही है बिल्कुल, आपको देखे फनकारों के दोनों जो दो है और दोनों ही फनकारों के बेटे, लाजमी शोबिस से बचपन से ताल्लुक और सुर संगीत का बड़ा गहरा ताल्लुक। और जनाब दो वक्त 2:00 तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और आप सबको मैं खुश आमदीद कहूँगा एफ एम पाकिस्तान पर। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो पर, उसके साथ साथ आप यकीनन यूट्यूब पर भी आप मेरा साथ दे सकते हैं और दे रहे हैं तो आप सबको खुश आमदीद। और अब यूँ करते शामिल करते हैं जनाब एक और आवाज़ माजी की यादों में से एक खूबसूरत आवाज़ और

0: Listen and watch live entertainment show. Asmal Khan Chowi Show every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan.
1: ये आवाज जो सुन रहे थे ये जीत बैंड होता था बोशुर में आया था इसमें और बड़ा कामयाब रहा बहुत ही जबरदस्त ये बैंड रहा और अब यूं करते हैं कि इसके बाद अब हम आते हैं कुछ माजी की खूबसूरत यादों की जानी बातें कुछ माजी के झरोकों को झांकते हैं और देखते कि वहां हमारे लिए क्या मौजूद है तो जनाब एक तो यूं करते हैं कि सबसे पहले हम आ जाते हैं कुछ माजी खूबसूरत यादों में से

आप जाइए शौक से, जाइए जाइए, हमें क्या सानों की, जाओ तुसी जाओ सानों की। और अब यूं करते कि आते हम जनाब, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है आपको पता है, और वक्त के साथ साथ यकीनन प्रोग्राम भी आगे बढ़ रहा है, जिंदगी के लम्हात भी आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह हम भी आगे बढ़ रहे हैं। वक्त कभी रुकता नहीं किसी के लिए, कभी का इंतजार नहीं करता, हम इंतजार होता है, दौड़ते हैं दौड़ते चले जाते हैं, सब कुछ है। हालात वाकयात के हिसाब से कहते हैं इंसान को अपनी जिंदगी को मेंटेन रखना चाहिए, मगर हालात और वाकयात के हिसाब से, क्योंकि अगर हम कभी कभी हालात के मुताबिक अपने आप को नहीं ढालते तो फिर हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा होते हैं, या फिर हमारी औलाद के लिए मसाइल पैदा होते हैं। क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको ढालना जरूरी है, वक्त आपके लिए नहीं रुकेगा, आप रुक जाएंगे और जब आप रुकेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, मगर आपको वक्त के साथ आगे बढ़ना है और बढ़ना चाहिए। यही अकलमंदी भी है कि हकीकत जो है उसको तस्लीम करना चाहिए और उसके साथ ही हमें अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और जो जमाने के साथ चल रहे हैं उनके साथ बढ़े चले, मगर वहां तक जहां तक आपको बेहतर लगता है, ये नहीं कि दुनिया कुछ कर रही तो हम भी वही करने चले, हमें अपने हिसाब से, मगर आगे बढ़ना जरूरी है हमारे लिए, अपनी समझ बूझ के हिसाब से अपने कदम को बढ़ाएं और वक्त की नजाकत को देखते हुए हालात में अपने आप को शामिल करें, यही जरूरी है हमारे लिए। और अब आते हैं हम, शामिल करते हैं फिल्म आई थी 1990 तकरीबन, लेट 70s की फिल्म थी एहतजाज, और आवाज इसमें नैयर की, बड़ा खूबसूरत क्लासिक सा गाना है ये एहतजाज, इस फिल्म का मैं गाना शामिल कर रहा हूँ नैयर की आवाज में।